से बहुत ज्यादा पेश आता था और बहुत सारे लोगों की जान इसी में चली जाती थी कि रास्ता भटक गए हैं तो पानी नहीं मिलने वाला है और पानी नहीं मिलेगा तो प्यास से मरना बहुत मुश्किल मरला होता था, लेकिन ये होता था। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अपने अज़्म इरादे के इतने कवि और इतने मजबूत थे, और इमाम ने जो लकब भी उन्हें दिया था, यहाँ पे ये जुमला भी मौजूद है, बीच में ये जुमला मैं उस खत का पढ़ देता हूँ, इन्नी बाएसुन इलैकुम अखी वबन अम्मी वसकती मिन अहले बैती, मैं भेज रहा हूँ अपने भाई को, अपने चचा के बेटे को और अपने खानदान के भरोसेमंद इंसान को। ये कहकर, ये लिख कर इमाम ने जनाब मुस्लिम को खत दिया था कुफे वालों के लिए। तो वो अपने अज़्म व इरादे की बुनियाद पर साथी मारे गए, जान चली गई, प्यास की वजह से मर गए, तो चलते रहे प्यास की हालत में चलते रहे, यहाँ तक कि किसी ऐसी मंजिल तक पहुँच गए कि जहाँ पानी फराहम हो गया अपने अज़्म व इरादे की बुनियाद पर, और शायद उससे भी बढ़कर अपनी जिम्मेदारी की बुनियाद पर, कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए मक्के जाकर मक्का छोड़ के निकले हैं, मक्के से हरम से निकले, अलबत्ता अभी हज का मौसम नहीं आया था, लेकिन बहरहाल हरम को छोड़ के निकले हैं। अब अगर मुझे दकीक याद है, अगर आप लोग कोई देखना चाहें तो देख लें, अगर गलती हो तो आप उसे सही कर लें बच्चे, कि कूफे से, मक्के से लेके कूफे का फासला शायद जो है 2000 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी 1900 कुछ किलोमीटर होता है। दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो मक्के से मदीना आके फिर कूफा जाना है, अजर मदीना, और मदीना पूरा अरब, पूरा अरब, मदीना जो है वो किधर है, मदीना जो है पूरे जजीरे अरब के वेस्ट में है, तकरीबन वेस्ट में, और इराक जो है ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो सऊदी अरब कितना बड़ा है, पूरे सऊदी अरब को क्रॉस करके फिर इराक की भी सरजमीनों को क्रॉस करते हुए कूफा पहुंचना, तो ये फासला बहुत ज्यादा था। आज के जमाने में फासले कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल उस जमाने में वो सहराओं में जो सफर करना था, तो वो सफर जनाब मुस्लिम ने उस जिम्मेदारी के तहत कि मुझे फर्जंद रसूलुल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी हुई है, तो हमारे कदम किसी भी हालत में नहीं रुकना है, प्यास है तो रहे, कमजोरी हो तो कमजोरी रहे, कदम आगे ना बढ़ पा रहे हों तो ठीक है, फिर भी कदम बढ़ाए जाएं, अपने जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के मबऊस करने की ताकत से कि फर्जंद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है। और जनाब मुस्लिम अपनी मंजिल तक पहुंचे, वहां पे जो खत पहुंचा, बीच के जुमले छोड़ के मैं असल जुमले की तरफ आता हूँ, उस खत में इमाम ने आखिरी जुमला तहरीर फरमाया अहले कूफा के लिए, वो जिक्र किया तुम्हारे खत आए और वो बाद मतालिब के साथ जो तुम्हारे साहिबान फजीलत लोगों ने भी खत लिखे, और मैं जो है आऊंगा, मुझे करा तो फी कुतुबकुम, तुम्हारे खतूत पे मैंने पढ़ा है और मैं इंशाल्लाह उस खतूत पे अमल करते हुए आऊंगा, लेकिन मैं अभी किसी को भेज रहा हूँ जो मेरा ये भाई है। और आखिर में जो जुमला लिखा उस पर तवज्जो करें, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगु है। इमाम ने फरमाया कि फल अमरी, मेरी जान की कसम, यही जो उम्र के लिए आप कहते हैं, फल अमरी, मेरी जान की कसम, मल इमाम इल्लल हाकिम बिल किताब, इमाम नहीं है सिवाय उसके कि जो किताब की बुनियाद पर हुकूमत करे। देखें ये जुमले तर्जुमा सुने, फिर मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। इमाम नहीं है, ये नहीं फरमाया कि इमाम वो होता है जो किताब पे अमल करे, तो उसमें फिर और भी बहुत सारी गुंजाइश हो सकती थी। हाँ, किताब पे अमल करे तो अपने ख्याल पे भी अमल कर ले, अपनी फिक्र पे भी अमल कर ले और अपनी सोच में भी अमल कर ले। आखिर इमाम है, मासूम तो गलती कर नहीं सकता, तो ठीक है उसके जहन में भी कोई बात आती है तो उस पर भी अमल कर ले, ये कुछ नहीं, इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं रखी। सीधे फरमाया कि मल इमाम इल्लल हाकिम बिल किताब, इमाम है ही नहीं सिवाय उस शख्स के कि जो अल्लाह की किताब पर अमल करने वाला, हुक्म देने वाला, अपना कोई हुक्म नहीं, अपना कोई हुक्म नहीं। इमाम ने अपने लिए, हम कुछ भी कह लें, कितना भी शेर व शायरी कर लें, सारी दुनिया का अख्तियार इमाम को दे दें, ठीक है, अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए इमाम को वसीला जरूर करार दिया है, वसीले फैज जरूर करार दिया है, लेकिन इमाम एक लम्हे के लिए अपने लिए जायज नहीं समझता कि मैं अपनी तरफ से कोई हुक्म दूं। जो भी हुक्म होगा वो अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह की किताब के

दूध बेचने वाले को मिलावट वाला दूध वो बहुत अच्छा लगता है, वो एक लीटर मिलाता है, वो बेचने वाले लेके चल रहे होते हैं, पानी अलग से ले चल रहे होते हैं, दूध भी लेके चल रहे होते हैं, कि जैसे जैसे दूध कम होता जाता है उसे पानी और मिलाते जाते हैं, तो उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूध लेने वालों को, दूध पीने वालों को, दूध को अपनी जिंदगी में लाने उनको पसंद नहीं आता। लेकिन दीन का अजीब मसला है कि दीन देने वाले भी, देने वाले नहीं, दीन बेचने वाले वो भी मिलावट करते रहते हैं और दीन लेने वालों को भी मिलावटी दीन पसंद आ जाता है। ये कैसे है भाई, हैं? दूध तो कबूल नहीं करेंगे आप। अच्छा, दूध में अगर पानी मिलाया जाए तब भी चलो भाई पानी ही मिला हुआ है, लेकिन दूध में तो अभी बहुत सारी चीजें मिलने लगी हैं। तो इसी तरह दीन में भी अगर चलो कुछ सादा बूदा, कुछ मुस्तहबात, कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाए तो फिर भी, लेकिन अभी तो बाकायदा दीन के पूरे रुख को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कल ही मैंने आपके सामने परसों पेश किया कि पूरी हुसैनियत का रुख ही बदलने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे बड़ी कोशिश थी जो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो गई, लेकिन अभी तक भी कुछ लोग उसके शिकार हैं कि नहीं, जिक्र हुसैन इब्ने अली कर लिया उसके बदले में निजात तो मिली जाएगी, क्या करना है, यही है, यही कोशिश, ये पूरा रुख ही बदल देने की। तो इमाम ने क्या फरमाया, इमाम ने फरमाया कि मल इमामो इल्लल हाकिमो बिल किताब, इमाम है ही नहीं सिवाय वो कि जो किताब के मुताबिक हुक्म करे, अपने मुताबिक नहीं, अपनी पसंद के मुताबिक नहीं। और एक जुमला जल्दी से कह के आगे बढ़ते अजीजों कि अपनी पसंद की हुकूमत करना बहुत ही आसान है। हम पूरी हुकूमत, बड़ी हुकूमत की बात नहीं कर रहे, हत्ता एक घर के अंदर भी, घर में भी किसी की हुकूमत तो होती है, चार लोगों की फैमिली है, पांच लोगों की फैमिली है, तो कोई उसमें एक हाकिम होता है, आमतौर से मर्द ही लोग होते हैं। कुरान ने भी कहा है कि बाज़ अहम फैसलों में अर्रजाल कवामून अल नसा, मर्दों को एक तरह की कयूमियत दी हुई है, मर्दों को एक तरह से गलबा दिया हुआ है, सारे मसाइल में नहीं, ये ना समझे उससे मर्द लोग, किचन के मसाइल में औरतों का मसला है, घर के मसाइल में, घर के डेकोरेशन के मसाइल में, घर की खरीदो फरोश के मसाइल में, इन सब में औरतों ही के सारी हुकूमत रहने दे, उसी में आपकी भलाई है, वरना मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन कुछ बड़े फैसले होते हैं जहां पे जज्बाती मसाइल नहीं होते हैं, और ख्वातीन को अल्लाह ने थोड़ा सा जज्बात और इमोशंस को बढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा उनसे काम लेना है, और वो बच्चों को संभालना, बच्चों को शिकम में रखना, बच्चे को पैदा करना, बच्चे की तरबियत करना, लिहाजा ये बहुत ही खूबसूरत पहलू ख्वातीन में रखा है। लिहाजा मुमकिन है इन इमोशंस की बुनियाद पर कहीं बड़े फैसले में कुछ गलती ना कर जाएं, इमोशंस वाले फैसले ना कर दें। ये एक्सेप्शन इसमें हुआ करते हैं, सबके सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर मसाइल ऐसे होते हैं, इसीलिए बाज़ ओहदे ख्वातीन के लिए इस्लाम में नहीं रखे जाते कि जज का फैसला ना करो, वरना कोई मजलूम आके एक खातून जब रोना शुरू करेगी, बिलक बिलक के रोएगी, तो कहीं उसके मुताबिक फैसला ना कर दो, जबकि वो शायद झूठा रो रही हो, ढोंग में रो रही हो। लिहाजा इमोशंस की बुनियाद पे फैसले नहीं, दलीलों की बुनियाद पे। तो वो ठीक है, मर्दों को वो हाकिमियत अल्लाह ने दी हुई है, तो वो जो इंसान एक घर की छोटी सी फैमिली में भी हाकिम हो, और आप में से मेरे ख्याल से आधे लोग तो ऐसे होंगे यहां जो मजमा मौजूद है, ऊपर ख्वातीन का मजमा, मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, वो अपने चार पांच लोगों की फैमिली में हाकिम है, तो आप देखें फर्क करें कि अपने मुताबिक घर में हुक्म चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन अल्लाह के कानून के मुताबिक घर में हुक्म चलाना ये बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं? मेरा दिल ये चाहता है कि मेरा बेटा इस तरह उठे, इस तरह बैठे, इस तरह चले, इस तरह खाए, यही सब्जेक्ट पढ़े। बाज़ लोग अपने बेटियों को मरीज, साइकोलॉजिकल मरीज बना देते हैं, वो कुछ और पढ़ना चाहते हैं, नहीं मेरा दिल ये चाहता है। तो रवायत मौजूद है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कि तुम्हारे बच्चे किसी और जमाने के, तुम दूसरे जमाने, जनरेशन गैप ही है, तो बच्चों के साथ अपने जनरेशन, ये पूरा मफहूम बता रहे हैं, अल्फाज नहीं बता रहे हैं, कि तुम जिंदगी जो है अपने बच्चों के एतबार से जीने की कोशिश करो, ना ये कि हम अभी तो जनरेशन गैप इतना बड़ा हुआ है कि तारीख में, ये 7000 साल की तारीख में कभी भी इतना ज्यादा जनरेशन गैप नहीं हुआ है जो हम लोगों की नस्ल में और अभी बच्चों की नस्ल में हुआ है। अजीब हुआ है, बहुत कुछ बदल गया है। तो एक बड़ी मुश्किल अभी पेश आ रही है, वो वाली नस्ल के लोग नए बच्चों के हालात को समझ ही नहीं पा रहे, वो क्या उन पे

0: इनके दिल में क्या चल रही है, जहन में क्या चल रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे। तो ये मसला थोड़ा मुश्किल है, पेचीदा है, लेकिन यहाँ पे ये अर्ज करने की कोशिश की जा रही है कि एक चार लोगों के घर में भी अपनी हुकूमत चलाना आसान है, लेकिन उसूलों के साथ, कानून के साथ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुकूमत चलाना मुश्किल है। तो फिर समझना पड़ेगा कि पूरे कूफे में, पूरे अरब में, पूरे 40-45 आज के मुल्कों में अल्लाह के कानून के मुताबिक हुकूमत चलाना अमीरुल मोमिनीन का काम था। इस पे गौर करें, पता नहीं इसे आप फजाइल समझेंगे या नहीं समझेंगे, क्योंकि बहुत महदूद फजाइल आपको सुनने को ज्यादा मिलते हैं। लेकिन लोग कहते थे कि रसूलुल्लाह की हुकूमत तो छोटी सी थी, 8 साल तक तो मदीने में थी, फिर 8वें साल के बाद थोड़ा सा बढ़ के जजीर अरब में हो गई। तो चलो वो छोटी सी हुकूमत एक मस्जिद से चलाई जा सकती थी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, थोड़े से लोग थे, कभी आना कभी जाना। लिहाजा अगर यही मसला होता, अगर खिलाफत का दौर शुरू होता और खिलाफत का दौर डायरेक्ट बनी उमैया के दौर तक और बनी अब्बास के दौर तक पहुंच जाता, तो लोग आज के जमाने में यही कह रहे होते कि भाई रसूलुल्लाह की हुकूमत की बात ना करो, वो एक छोटे से मदीने की हुकूमत थी, थोड़े से मदीने और आसपास के लोगों की हुकूमत थी, वो इस तरह से दीन की बुनियाद पे चलाना आसान था, अदल की बुनियाद पे। लेकिन बड़ी हुकूमतें ऐसी नहीं चलाई जाती, बड़ी हुकूमतों के लिए दुनिया के कानून बने हुए हैं। लेकिन खुदा की कसम, 4.5 साल 4 साल 9 महीने अमीरुल मोमिनीन ने पूरे दुनिया इस्लाम पे अदल और कानून इलाही के मुताबिक हुकूमत चला के बता दिया कि नई हुकूमत अल्लाह के कानून के मुताबिक इतनी अजीम हुकूमत भी चलाई जा सकती।
1: नारे
0: अब ये मौजू नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी के भी और अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी की और भी ज्यादा। जब बार बार लोग आके मशवरे देते थे, ये ना करें ये ना करें, ये बहुत बड़ा कबीला है, ये बहुत बड़ा खानदान है, ये कहीं नाराज हो गया, आप इस पे हद जारी ना करें, आप इसके हाथ ना काटें, आप इसको सजा ना दें, पूरा कबीला नाराज हो जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अमीरुल मोमिनीन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, जिसको भी नाराज होना हो नाराज हो ले, लेकिन अल्लाह का कानून पामाल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? यही अजमत है अजीजों। मल इमाम इल्लल हाकिम बिल किताब, इमाम है ही नहीं सिवाय उसके कि जो किताब के मुताबिक हुक्म करे। अब अभी इमाम के लफ्ज में कभी कभी हम फंस जाते हैं, इंशाल्लाह ये मसला हल हो गया, आप लोगों के लिए हल हो गया हो। हमने अपने जमाने में भी देखा कि जब अपने उसूलों पर नहीं, अपनी चाहत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह के कानून के मुताबिक जब हुकूमत चलाई गई, अपनी मनफातें नहीं देखी गई, अपने मुल्क की मनफात नहीं देखी गई, मुल्क को नहीं देखा गया, अल्लाह के कानून को देखा गया, तो अल्लाह ने ऐसी इज्जत और अजमत अदा की कि जो तारीख के लिए एक नमूना बन चुकी है। धीरे धीरे बाद के लोग पढ़ेंगे, आप तो देख रहे हैं, लेकिन बाद के लोग पढ़ेंगे क्या होता है। रहबर शहीद जो हमारे दरमियान में नहीं रहे इस साल के मुहर्रम में, पिछले साल के मुहर्रम में थे, आपको मालूम है कि पिछले साल मुहर्रम से पहले इसी जून में जंग हुई थी 12 दिन की, और उसके बाद जंग तो बाकायदा रुकी नहीं थी, कभी भी खतरा था, कभी भी मिसाइल मारा जा सकता था। लेकिन जिक्र हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के लिए जब दाखिल हुए, पहले से खतीब को भी नहीं बताया गया था, शायर को कुछ नहीं बताया गया था, और जब ऐसी मजलिस में आए और दाखिल हुए तो जैसे उस अजाखाने में नहीं बल्कि पूरे ईरान में जैसे एक नई रूह पैदा हो गई।
1: जिंदा है रहबर,
2: जिंदा है,
1: जिंदा है रहबर,
2: जिंदा है,
1: हम सब के दिलों में
2: जिंदा है,
1: हम सब के दिलों में
2: जिंदा है,
1: ईरान में देखो
2: जिंदा है,
1: इराक में देखो
2: जिंदा है,
1: लबनान में देखो
2: जिंदा है,
1: जिंदा है रहबर,
2: जिंदा है,
1: जिंदा है रहबर,
2: जिंदा है,
0: चलो मैं एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ, मुहर्रम ही का वाकया है कि कोविड का जमाना था, आप सभी को कोविड तो भूला नहीं होगा ना, जो बहुत छोटे बच्चे उनको नहीं इतना याद होगा, लेकिन जो देख चुके हैं उनको जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। जब इंसान सोच रहा था क्या होने वाला, अब इसके बाद कब कभी इकट्ठा हो पाएंगे इस तरह से कि नहीं इकट्ठा हो पाएंगे, जब कैमरे पे हम लोग मजलिसें पढ़ रहे थे यही चंद साल पहले के, तो कोविड का जमाना था और ईरान में बहुत

ज्यादा कोविड का असर हो गया था, ये भी शुरू शुरू में जल्दी असर हो गया था, जैसे इटली में, ईरान में कुछ जगह बहुत तेजी से असर हो गया था। तो वहां पर आकर लोगों ने पहले ये रहबर से कहा, चूंकि हमेशा मजलिस होती थी, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन था मुहर्रम, चूंकि जो शख्स मजलिस पढ़ रहा था उसी ने यह वाकया बयान किया, अभी भी क्लिप मौजूद है, आप चाहें तो देख लेंगे फारसी में, अलबत्ता डॉक्टर रफी, डॉक्टर रफी उन्होंने कहते हैं, जो ईरान के टॉप लेवल के चार पांच सबसे बड़े खतीबों में है, और जो है रहबर का कोई भी प्रोग्राम होता था फातिमिया का, मुहर्रम का या और भी कोई अहम, तो उसमें एक खतीब जो है वो खुद डॉक्टर रफी होते थे, हम लोग के असातिद में से भी थे, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अजीमुशान। तो उनका यह बयान है कि जब लोगों ने कहा कि कोविड बहुत शबाब पे है, बहुत पीक पे है, खतरा बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं इस साल जो है इस साल मजलिस नहीं करते हैं। तो मुमकिन है बहुत सारे लोग, हाँ हाँ ठीक है, इतना कोई जरूरी थोड़ा नहीं, घर में बैठ के किताब पढ़ लेंगे, रो लेंगे। लेकिन रहबर शहीद ने कहा कि नहीं नहीं, मजलिस तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, सबको दावत नहीं दो, उमूमी दावत नहीं दो, भीड़ ना हो, मजमा नहीं हो, लेकिन मजलिस तो हो। तो खतीबों को बुलाया गया। अब इनका यह बयान है कि जब मैं पढ़ने के लिए वहां पर पहुंचा तो देखे यहां भी जो है ईरानी जैसा है, लेकिन यहां पर तीन जीनों का मेंबर है आमतौर से, वहां रहबर के जो यहां मेंबर रखा है, पांच जीनों का ऊंचा मेंबर है, मजमा चूंकि बहुत बड़ा होता है तो थोड़ा ऊपर बैठना पड़ता है ताकि दूर तक दिखाई पड़े, तो बिल्कुल ऊपर बैठने का मसला था। अब कह जब मैं अज़ा खाने में दाखिल हुआ तो रहबर जो आमतौर से दूर उधर जो है, आप लोगों ने देखा होगा, दूर एक कुर्सी रख के वहां पर बैठते थे, एज ज्यादा थी इसलिए कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन जब चूंकि मजमा नहीं था तो उन्होंने अपनी कुर्सी बिल्कुल मेंबर के नीचे यहां ला के रख ली, यहां बैठने के लिए बहुत फासला ना रहे। और उनका कहना था कि चंद लोग और भी दफ्तर के थे जिसमें खुद रहबर के बास फर्जन थे, वो कई दूर दूर किसी कोने में कहीं पर वो भी बैठे हुए थे, ये चंद लोगों की मजलिस थी और मिंबर रहबर की कुर्सी बिल्कुल करीब थी। जब मैं वहां पहुंचा मजलिस पढ़ने के लिए और मुझे ये सारी मंजिलें तय करके, जीने तय करके उधर ऊपर जाके बैठना था, और रहबर चलो दूर बैठे होते चलो फिर भी मसला नहीं था, और बिल्कुल यहाँ पे करीब आके बैठ गए, तो कहने लगे कि मुझ माफ कीजिएगा, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं और मैं उधर ऊपर जाके पढ़ूं मजलिस को, वहां खिताब करूं, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं यहीं नीचे बैठ जाता हूँ, पहले ही जीने पर बैठ जाता हूँ और मजलिस पढ़ देता हूँ। मजलिस है तो मजलिस, बहरहाल ये भी अहम मसला होता है कि रहबर के सामने कोई मजलिस पढ़े, लेकिन बहरहाल होती है। तो इसरार जब किया, मना कर रहे थे, जब उन्होंने इसरार किया तो रहबर शहीद ने जुमला फरमाया कि तुम आप जो है हुसैन इब्न अली के खतीब है, जाकिर हैं, आपका मकाम ही वही है। इस वक्त एक तालिब इल्म की हैसियत से नहीं, एक आलिम की हैसियत से नहीं, आप हुसैन इब्न अली के जाकिर की हैसियत से आए हैं, तो इस वक्त मेरा मकाम यहां पर है और आपका मकाम वहां पर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाए। तो इन कलमात में उलझने की जरूरत नहीं है। इमाम के माने होता है लीड करने वाला, लीड करने वाला, इमाम अरबी में यानी जो आगे हो उसके पीछे कुछ लोग चल रहे हैं, इसी को कहते हैं लीड करने वाला। तो ठीक है, जब भी कोई इमाम खुमैनी या इमाम खामनाई कहता है तो किसी के जहन में यह तस्वुर भी नहीं होता कि वो आइम्मा अहले बैत के करीब ले जाना चाह रहा है, सोच भी नहीं होती। वो ये जानते हैं कि वो तो अपने आप को आइम्मा के गुलामों का गुलाम समझते हैं, वो तो अपने आप को आइम्मा के कदमों की खाक समझते हैं, लेकिन इन मसाइल में उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिफात को देखना जरूरी है। सिफात क्या है? सिफात ये है कि जो भी, अब इमाम नहीं कहते हैं, लीड करने वाला, जो भी लीडर होगा, जो भी लीड करने वाला होगा, उसकी सिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान की है कि पहली सिफत यह है कि उसका कोई भी फैसला होगा वो अल्लाह की किताब के मुताबिक होगा। अब यहीं से समझें कि अल्लाह की किताब सिर्फ इसलिए नहीं कि माह रमजान में पढ़ के कुछ सवाब ले लिया जाए, अल्लाह की किताब जिससे फैसले हों। कहां के फैसले हों? सिर्फ किसी मुल्क की हुकूमत के फैसले नहीं, बल्कि हमारी जिंदगियों में एक घर की भी अगर हुकूमत है तो वहां फैसला हमारा नहीं हो बल्कि फैसला अल्लाह की किताब के मुताबिक। और अगर ये करके देखेंगे तो आप चंद दिनों में, चंद महीनों में अपने घरों के हालात बहुत ज्यादा, इतनी शिकायतें हम लोगों के पास आती हैं, आप लोग भी आगाह होंगे अपने आसपास में इतनी शिकायतें आती हैं। वजह क्या है?
اس لیے کہ ہر ایک اپنے مطابق گھر چلانا چاہے۔

0: मुझे कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना।
1: मुख्तार को पहले ही नारिया से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो।
2: क्या हुआ नारिया?
0: तुम तो कान लगाए हुए खड़ी थी मक्कार, सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय, तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया, काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे।
2: गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया?
0: मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्ने जुंदब के अलावा किसी की भी बेटी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती।
2: अब भी कर सकती हो?
0: नहीं हो सकती जारिया, तुम्हारी चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे, वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है, जाए तो मैं भी उसके पाँव की जंजीर नहीं बनना चाहती।
2: नहीं, बजाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा।
0: हाँ, क्यों नहीं, मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है।
2: नारिया, तुम क्यों हसद नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है, उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है।
0: वाकई?
2: जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मरती है और गश खाती।

0: ईरानी अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है।
1: मकसद?
0: तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फाते है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था।
1: ज्ञान, मैं मुख्तार हूं, अपने ही शबीह हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हर रात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक है वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है। इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेजे पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है।

गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं? आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहे जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दें। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाब है कि वो आपके शहर की तरफ आए, जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है? मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूँ जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अजादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नीयत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। लाहौर।

0: समंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं।
1: वो बोलना आ गया है तुम्हें आर्जा? खाली मैदान में रिजल्ट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायसे नंगवार हो। तुम लोग जो आज माविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैत कर ली?
0: सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए, जबकि शरीयत मोहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न माविया न अली और ना उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं।
2: क्या हुआ? मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी।
3: अगर जरूरत है तो मुख्तार की मौजूदगी में रजत खानी करो।
4: ये तनाजा अब देखने वाला है।
5: अब आया मद्दे मुकाबिल।
6: मैंने सुना है कि वो सिपह सालार बन गया है।
7: डंडोरा पीटने वाले तो उसके अमीर मदायन होने का ऐलान कर रहे हैं।
2: अमीर मदायन तो था
8: मुख्तार। अमीर मदायन कहाँ से हो गया? मदायन का अमीर मुख्तार का चचा है।
9: अजीब बात है कि चमगादड़ दिन के उजाले में मैदान में निकल आए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, चमगादड़ रोशनी से डरता है और रात की तारीकी में शिकार के पीछे भागता है।
0: तुम तो गैर जानीदार थे और इस भाई भाई की जंग के खिलाफ थे अबू इसहाक। इसका मतलब है तुम्हें भी फरेबता कर लिया है उन लोगों ने। तुमने किस लालच में अपने दीन को दुनिया के बदले बेच दिया मुख्तार?
9: बादशाह इराक के बदले? कैसे? जानते हो क्यों मैं बकौल तुम्हारे इस भाई भाई की जंग में किसी की हिमायत नहीं कर रहा था? इसकी दलील इस अदालत पर गुस्सा है जो तुम जैसे हैवानों को भौंकने और पंजा मारने का मौका देती है, और तुम लोग अवाम के दरमियान अपने जाहिलाना उपकार को चिल्ला चिल्ला कर फैलाते हो। खवारिज मेरी नजर में काफिर हर भी हैं जिनका खून बहाना हलाल है, चाहे वो तलवार खींचे या न खींचे। फकत इस बार तुम लोगों के खून से गुजर रहा हूँ। हुक्मिल काज़मीन अलगैज व आफीन अनिल नास की इताद करते हो। अब तुम लोग दफा हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक और बार तुम लोगों को मैंने देख लिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। जाओ और इस पैगाम को अपने खबीस दोस्तों तक पहुँचा दो।
0: क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस्वानी करती है इराक के मुस्तकबिल के बादशाह?

0: फिर तलवार से कुत्ते को नहीं मारा। ज्ञान, इस शैतान की फौज को कोई मौका मत देना। इस गिरोह की रिहाई रैयत पर एक जफा है। इन सबको महल का कैदखाने में ले जाओ।
1: जी अमीर।
0: अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो। आज के बाद कोई भी तलवार या लकड़ी या छुरा वगैरह लेकर शहर में शोर और बलवा बर्पा करेगा, वो मेरा दुश्मन है, मुजरिम है, चाहे वो अरब हो।

0: चेहरे पर 12 बजे हुए हैं मेरी जान? हुआ क्या है?
1: मुख्तार मैदान में उतर आया है, तुमने नहीं सुना क्या?
0: क्यों नहीं, मदाइन में आग लग गई और मुख्तार ने पानी की तरह उसको बुझा दिया। क्या नक्शा खींचा है उसने, किसी को भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उसे घर में रोकने में नाकाम हो गई ना?
1: मैं नहीं कर सकी हनाना,

0: को बुझा दिया। क्या नक्शा खींचा है उसने? किसी को भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उसे घर में रोकने में नाकाम हो गई ना?
1: मैं नहीं कर सकी हनाना, वो जाल में नहीं फंसा। और तो और नारिया का इश्क भी उसे रोक नहीं सका। उसने अपने कान हर वसवसे के लिए बंद कर लिए हैं।
0: तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अगर मुख्तार मैदान में उतर आए तो क्या उसने उमर के हाथ बांध दिए हैं? जब उमर इराक का बादशाह बनना चाहता है तो फिर तो उसे मुख्तार की रुकावटें हटानी पड़ेंगी।
1: क्या वो ऐसा कर सकता है हनाना?
0: अगर तुम चाहो तो कर सकता है।
1: अब उसने कौन सा ख्वाब देखा हुआ है?
0: अच्छा ही देखा है बेटा, उमर और मुख्तार बचपन से ही दोस्त हैं। मामले को मिलकर हल कर लेंगे। इधर आओ, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि उसने तुम्हारे लिए कौन सी चाल सोच रखी है।
2: इन रगने वाले मजूसियों को कत्ल कर दो। चलो ए जाहिल मजूस, तुम लोग वजबुल कत्ल हो, तड़पो और तड़पो। हक किसके साथ है, हाँ माविया या अली? हर जाए से नसर पर असर बोझ रख गया दो, जो माविया के कुत्तों की फराक में से लेकर आया। हक उसके साथ है जिसके पास सोना है या खुदा की ताकत। मार चुके
3: का सर है या गधे का सर?
2: ये सींग तुम्हारे सर पर क्या कर सकता
4: है? खर, तूने गड़ा खोदा, उसी में तू गिरेगा।
5: बेशक तू गिरेगा।
4: ए खर, तूने जो किया है सो भुगतना तो पड़ेगा।
5: पिट पिट के मरेगा।
4: ए खर, क्योंकि तू गधा है तुझे चाबुक भी पड़ेगा।
5: सेना तो पड़ेगा।
4: ए खर, तू धोबी का कुत्ता है जो ना घाट ना घर का।
6: तो हमारे बड़े और छोटे पर रहम नहीं करेगा।
7: टिड्डा खाने वाले अरब, तुम्हारा दिल मदाइन और मदाइन वालों के लिए फिक्रमंद नहीं, बल्कि सबको पता है कि खजरमी अरब माविया के चेले हैं। तुम लोग डर रहे हो कि कहीं माविया तुम्हारी रोटी रिश्वत ना बन कर दे।
8: अहमद खंजे, माविया इतना सखी है कि अगर खदे को भी अस्तबल में बांधता है तो उसकी आगे अजरबिया डाल लेता है। तुम जो अली के बेटे की मोहब्बत का चर्चा करते हो, वो तुम्हें कौन से फूलों का हार बना देगा खदे कहीं के?
7: अली के बेटे की अदालत के लिए यही बात है कि वो अरब और अजब को एक निगाह से देखते हैं। हम उनकी सदा पर जान देने को तैयार हैं।
8: खुदा, यही वजह काफी है कि हम अली के बेटे के खून के प्यासे। तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस आरज़ू को तुम लोग कब्र में ले जाओगे कि अरब और अजम एक हों।
7: माविया के गधे।

0: सरकार, ये लोग हजरमी अरबों में से हैं।
1: तुम अजमों के किस शाखे से हो?
0: दीलम के अजमों में से हूं।
1: हजरमी अरब और दीलमी अजम का तनाजा, इसका मतलब है जंग, उमवी और अलवी की जंग। मगर यहां पर क्यों? मदाइन में रंगने वालों के बाजार में क्यों? शहर के अंदर तनाजे का मतलब फितना अंगेजी, यानी जंग, कानून और अमन के खिलाफ जंग, अमीर से जंग। आज इस शहर का अमीर मैं हूं। लड़ने के लिए मर जाता हूं मैं।

0: Kian.
1: Jiamin.
0: In sab ke nama ya amal ka baghaur jaiza lo. Jis ne bhi koi zarb lagai hai ya khai hai, woh mujrim hai.
2: जनाब आली, आप पूछेंगे नहीं ये शोर शराबा और लड़ाई किस बात पर है?
0: ये सब काजी का काम है, ना कि अमीर का काम।
3: दिमाग ठिकाने आया? यही थी वो अदालत जिसके लिए तुम खुद को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे।
2: अफसोस है मुख्तार, मैं सोच रहा था कि कर्ब मर्द दिलावर मैदान में उतरा है ताकि शिया ख्वार और कमजोर ना हो। क्या तुम्हें ये तवक्को थी कि मैं इस खुद फरोश और मरीज हजरमी शेख के सामने घूंगा रहता? अली के बेटे की हिमायत के जुर्म में मुझ पर कुल्हाड़ी उठाई थी तो क्या मुझे अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए थी?
0: जो बरहक है वो अदालत और काजी के फैसलों से डरता नहीं है। हाँ, वो शिया जो दुश्मन की चाल में मददगार साबित हो उसके लिए बेहतर यह है कि वो जिंदान में ही रहे और सड़ जाए।
3: मुख्तार, खालुल मोमिनीन माविया इब्ने अबू सुफियान उस जंग का जीतने वाला बादशाह है जो मोहम्मद की मीराज पर उठाई गई है। तुम और तुम्हारे चचा उसमें रुकावट नहीं बन सकते। तुम सियासत के आदमी हो मुख्तार, अली के बेटे और इराक की हुकूमत के बीच सौदा क्यों नहीं कर लेते?

0: इन्हें जिंदान क्यों नहीं ले गए?
1: हमने चाहा कि इन लोगों का तमाशा देखें।
0: इससे क्या होगा?
1: इन लोगों की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए इबरत है जो अब तक आजाद है।
0: लोगों की अबरू से खेलते हो? लोगों की नजरों से इन्हें दूर करो।
2: जी अमीर।
3: आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं भाइयों, शायद अपने भतीजे की मदद से आप लोगों की जरूरत को चंद दिनों के लिए हल कर सकूं। ये मेरे भतीजे मुख्तार हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम ऐ मुख्तार।
0: वालेकुम अस्सलाम। बैठिए।
5: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
5: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
4: अबू उबैद के बेटे मुख्तार के बारे में बहुत कुछ सुना, मुझे फख्र है आपसे मुलाकात पर।
0: ममनून और मशकूर हूँ। बैठिए।
3: खुदा रहमत नाजिल करे गुज़िश्तगान पर। जैसे ही दरवाजे से अंदर आए हो, मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई अबू उबैद आया है। तुम्हें पता है इस लिबास में किस कदर उसकी शबाहत रखते हो। मरहबा मेरी जान, तुमने मेरी इज्जत बढ़ा दी। तुम्हारी खबरें एक एक बारीकी के साथ मुझे मिल रही थी। क्या जरबेकारी लगाया है तुमने।

0: इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसका अजाला नहीं करना चाहते?
1: नहीं चाहता नहीं, बल्कि नहीं कर सकता।
0: क्यों नहीं कर सकते? तुम फरमा रवाई और मामलात को संभालने में एक बेमिसाल महारत और कुदरत रखते हो। तुमने एक आधे दिन में मदाइन को तस्खीर कर लिया। क्यों ऐसा सोचते हो कि इराक की एक निडाल फौज में तुम्हारा जान डाल दूं?
1: मैंने मदाइन को आधे दिन में फतह कर लिया क्योंकि मैं एक मुकम्मल इख्तियार रखता था, क्योंकि मैंने सरकूबी की सियासत से काम लिया। इमाम इस तरीके से मुत्तफिक नहीं है।
0: क्यों?
1: क्योंकि इस तरीके में मुमकिन है कि बेगुनाह लोगों की भी कुर्बानी हो जाए। रंगने वाला बहराम इसका एक नमूना है। मुझे पता है कि वो बेगुनाह है, मगर उसे बंद नहीं करता तो अरब और अजम का शोर खामोश नहीं होता।
0: बहुत खूब, यह भी एक दलील है।
1: मुझे उम्मीद है कि इमाम का मदाइन में रुकना ज्यादा तूलानी न हो।
0: तुम्हें किस बात का गम है मुख्तार?
1: मेरी खेती बाड़ी, मेरी रियाया के मामलात, रोटी खाने वाले लश्कर को चलाना छोटा मशगला नहीं।
0: ख्यान, मुख्तार के एक अहम मशगलों में से एक तुम हो। इस शेर बहादुर को औरत, सरात और रोटी पानी में कैद किया हुआ है तुम लोगों ने।
1: ख्यान, मेरा अहम मशगला तुम हो?
2: मैं आपका गुलाम हूं मुख्तार।
1: चुकंदर की तरह लाल

0: क्या तुम नाराज हो गए हो अबू इसहाक?
1: हमारी दोस्ती के बारे में सोच रहा था।
0: कुछ गलत तो नहीं सोचा ना?
1: हकीकत यह है क्या, मेरा रिहाकारी न करने वाला दोस्त मेरी बहन के रिश्ते की खातिर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। एक अजीब सा एहसास है ज्ञान, जारिया मेरी सगी बहन है और मेरे घर में बड़ी हुई है। ठीक है कि मैंने उसे बाप की तरह पाला, मगर मान लो कि मैं उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है, मगर हतमी जवाब जारिया देगी न कि मैं।
0: एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी।
1: इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। मरहबा मरहबा उम्मे साबित, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने? मेरी हुरमत जहन्नुम में जाए, ये होती है मेहमान नवाजी।
2: तुम कूजे को मेरे सर पर क्यों तोड़ रहे हो मुख्तार? जनाब कियान, मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं समझ रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारिया को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ।
0: मैंने ये जुमला अरबों की जबान से बहुत सुना है बानो, कोई बात नहीं।
1: बदतमीज गुस्ताख कहीं की?
3: नहीं अबू इसहाक, नहीं। तुम्हें कियान की जान की कसम, वो अभी जवान और मगरूर है।
0: बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में जलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें।
1: तुम दखल मत दो कियान, उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है।
0: मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए।
2: जारिया मेरी बेटी की तरह है, मैंने उसे माँ का साया दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारी जिंस में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा, तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था।
4: मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था, उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनामो निशान ईरानी ना होता।
1: अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो बदशक्ल बेअदब लड़की।
4: मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैद सकफी की बेटी जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम मगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तौहीन को मेरे हक में कभी कबूल ना करते। तुमने कैसे कबूल कर लिया कि एक बेनामो निशान ईरानी अरब की तमाम तर रस्मों को पामाल करके अपनी हवस की नजर कर दे मुख्तार?
1: फजीलत किसी कौम नजाद और कबीले से नहीं है नाफहम लड़की, हम मुसलमान हैं। उस ईरानी के बारे में क्या जानती हो जो इसकीने और बुग्ज के साथ उस पर हमला कर रही हो? तुम एक ना से भी उसे जवाब दे सकती थी।
4: उसने मेरी तौहीन की और मैंने भी उसकी तौहीन का जवाब दे दिया।

0: मुझे यकीन आ गया कि जाहिल अरब का खून तुम्हारे रगों में जारी है। गौर से सुनो जारिया, अब तक मैं समझ रहा था कि हलाल लुक्म तुम्हारी वैश्याना खुल को खू को बदल सकता है। आज के पास से तुमसे उन जाहिल अरबों की जबान में बात करूंगा, उन्हें तेग़ व तबर की जबान में, जिन पर इस कदर नाच रही हो। तुमने मेरे दस्तरखान पर कद निकाला है, बस तुम मेरी कनीज हो।
1: अब तक भी यही था, तुमने हमेशा से एक बुरी नजर से मुझे देखा है। तुम मेरे मालिक हो ना के भाई, चाहो तो जिस भी कीमत पर दिल चाहे अपने उस ईरानी दोस्त के हाथों बेच दो मुझे।
0: कियान को दुल्हन चाहिए, बिच्छू नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा। इस कदर कुंवारी रहो, इस कदर कुंवारी रहो कि तुम्हारे सर के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के हो जाएं। शाबाश, शाबाश है जो तुमने इसे तमीज सिखाई है।
2: मैंने उसका साथ नहीं दिया मुख्तार, जारिया एक तन्हा लड़की है। आज उन लड़कियों की खुशनसीबी के बारे में बात कर रही थी जो जिंदा दफना दी गई हैं। वो तमन्ना कर रही थी कि काश वो लड़का पैदा हुई होती। मुझे डर है कि वो पागल ना हो जाए।
0: एक वहम इश्क की दीवानी हो गई है। अगर तुम्हारा दिल उसके लिए जलता तो तुम उसके लिए एक अच्छी माँ साबित होती।
2: तुम तो ना इंसाफ नहीं थे मुख्तार, उसे अपने शौहर के इंतखाब का हक दे दो।
0: इंतखाब करे मगर पिसारे सादिया भी वकास को नहीं। मेरे लिए ये नंगवार का बायस है कि मेरा बहनोई उम्र साद हो। नारिया, अगर मेरे गुरूर को जख्मी किया तो अपने इश्क का सर कलम कर दूंगा।

0: देखा अरब का आजम से क्या रिश्ता है। अगर मेरी जबान से इनकार सुन लेते तो शायद हजारों ख्याल तुम्हारे जहन में आते। मैंने सोचा कि तुम ना का जवाब खुद उस सरफिरी और पागल लड़की के मुंह से सुनो, वो मुख्तार जो मैदान जंग में एक नारा लगाकर फौज को डरा देता है और उनके तन बदन में रोंगटे खड़े कर देता है। उसकी अपने घर की हुकूमत में एक चूहे जितनी अहमियत नहीं है। दर्दनाक बात तो यह है कि मुख्तार एक अली का शिया उस लड़की पर आशिक हो गया जिसके बाप को रसूल खुदा ने लानत की है। उस इश्क की रुसवाई मेरी सात पुश्तों के लिए काफी है। नहीं किया तुम नहीं, तुम अली के मुखलिस शिया होते हुए ऐसा शरीक हयात चाहते हो जो मलामत की हकदार है। यह नंगवार काफी है कि उम्र साथ एक गंदा और मक्कार भेड़िया जारिया के करीब बैठा है और अपने बाप के नाम और नमूद की बिना पर उसे फरीफ्ता कर रखा है। मेरा हाथ उस दज्जाल तक पहुंच जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा।
1: मरहबा आहसानत। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के लिए फख्र का बाइस है कि मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी उसका दुश्मन है। मुख्तार बुजुर्ग को गुस्सा दिलाकर बहुत गुरूर का एहसास कर रहा हूँ।
2: आज की रात इस घर में क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो हरामजादे?
1: ज्यादा मत चिल्लाओ मर्द मोमिन, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गलाफ में रखो इसे, मैं मेहमान बनकर आया हूं। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो, ये कोई जवा मर्दी नहीं है।
2: जस्ट

0: सत ने इस घर को नापाक किया है, सिर्फ कौन से पाक हो सकती है। आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो।
1: इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम और फरासत का सुना तो वो मुबालगा था।
2: ज़रबी, जाओ मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी।
3: जी बानो।
1: मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे?
0: तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो।
1: मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं।
0: जारिया तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा।
1: मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता।
2: नारिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, सिर्फ तुम मुख्तार को ठंडा कर सकती हो।
4: मैं डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है।
1: बेवकूफ न बनो मुख्तार, हम इस मौजू को मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं।
0: मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो आली उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले दामाद अपना दफा करो।
1: याद रखना, तुमने खुद कहा था मैं आज रात खैर के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब सर्ब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूं। आज की रात या तो इश्क के किले के दीवाने और सरफिरे दारोगा पर गलबा हासिल कर लूंगा या फिर माशूक के विसार की राह में जान दे दूंगा।

0: आया इससे पहले कि वो अपने इश्क को मार दे कुछ करो। इस जंग का अंजाम सो का लिबास है जो हम दोनों में से कोई एक पहनेगा।
1: मेरे भी हाथ पांव फूल रहे हैं जारिया। अब तक मुख्तार को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। तेरा पांव टूट जाए सती कहाँ चले गए? फकत सईद ही इस जंग की आग को बुझा सकते हैं।
2: साबित कर दूंगा कि फातह ईरान का बेटा हूं।
3: ईरान के फातह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फुतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है।
2: मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मत मुकाबिल को तलब करना इतने शोर में।

0: Reach out, Otaki-chan! तुम कहां और सफेद महल कहां स्पेशल साथ?
1: हमारे खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए।
0: कौन सा मेरे खैर नामर्द?
1: हाथ

जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं। तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़के

0: तो कहां गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पे नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं।
1: कहीं ना कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था कि जो कोई भी बगैर इसने दुखूल दाखिल हो जाए उसका खून बहा दिया जाए। तुम कैसे इस महल में घुस आए और अब तक जिंदा हो?
0: खूब, ये तो मेरा एक बाल बलन था कि मैं अब तक जिंदा हूं, और ये देखिए मेरा खून भी बहा है।
1: तुम्हारा एक बाल बुलंद नहीं था, एहतमाल इस बात का है कि हमारे महल की दीवारें मजबूत नहीं थीं। शायद हमारे दरवाजे का मुहाफिज किसी दिरहम और दीनार की थैली से कमजोर पड़ गया हो। जल्द पता चल जाएगा कि रिश्ता मांगने के बहाने के पीछे कौन सी गलत नियत छुपी हुई थी। डाल दो इसे कैदखाने में।
0: तुम तो एक अकलमंद और बातकवा मर्द हो हजरत वाली, किस अदालत पसंद दलील के तहत मुझे कैद कर रहे हो?
1: अभी कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ है, तुम चंद दिनों के लिए महल के मेहमान हो।
0: जनाब वाला, अली के बेटे के लिए कोई दर दीवार बचे ही नहीं है जिन्हें मुझे फताह करना पड़े। आप खामखा शक कर रहे हैं।
1: यही तो तुम गलतफहमी के शिकार हो गए हो। मैं जब तक रसूल खुदा के बेटे का मेजबान हूँ ये तहैया कर चुका हूँ कि शामी शैतानों के तरीके पर हुकूमत करूं। अगर कोई दलील हुई तुम्हारे पास तो मैं मुहाकमे में सुनूंगा।
2: उस बिच्छू को मेरे हवाले कर दे चाचा जान, मैं वादा करता हूं कि उसकी जबान खुलवा दूंगा।
1: एक शर्त पर मुख्तार, वादा करो कि

कर आया है। और ये सारे 900 बरस जो है ये तबलीग की पीढ़ियत थी, यानी सारे 900 बरस तक आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, दीन की तरफ आपने दावत दी। रिवायतों के अंदर हमें ये मिलता है, अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमत अपनी किताब हयातुल कुलूब के अंदर लिखते हैं कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत दी दीन की तरफ 300 बरस तक। पहले 300 साल तक दावत दी और देखा कि लोगों ने आपका कहा नहीं माना, बल्कि आपको रद्द किया, आपको झुठलाया, और सिर्फ ये नहीं बल्कि आपको तंग किए, परेशान भी किए। जब बेजार आ गए तो जनाब नूह ने दुआ की बारगाह परवरदिगार में कि ए परवरदिगार, मैं अपनी इस कौम से बेजार आ चुका हूँ, लिहाजा तू अब अपने अजाब को इन पर नाजिल कर, उन पर नफरीन कर, उन पर तू अपनी लानत को भेज। तो खुदा बंदे आलम ने अपने फरिश्तों को भेजा नूह को समझाने के लिए, आए नूह को समझाए। नूह ने अपनी इस तबलीगी पीरियड को मज़ीद 300 साल के लिए बढ़ा दी और मज़ीद 300 साल तक तबलीग करते रहे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे। 600 साल के बाद देखा कि वही हालत बरकरार है कौम के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं, बुलाते हैं लेकिन सब मसखरा उड़ा रहे हैं, नूह को झुठलाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। फिर से नूह ने दुआ की और कहा परवरदिगार मैं इनसे बेजार हो गया हूँ, अब तू अपना अजाब इन पर उतार। तो फिर से खुदा ने फरिश्तों को भेजा नूह को समझाने के लिए और मज़ीद 300 साल तबलीग की उन्होंने बढ़ा दी। 900 साल के बाद नूह ने जब देखा कि सिर्फ गिनती के बराबर लोग थे कि जो नूह के की दावत को उन्होंने कबूल की और दीन को उन्होंने स्वीकार किया, तो फिर से जनाब नूह ने दुआ की और कहा परवरदिगार अब तू अपने अजाब को इन पर नाजिल कर। तो अल्लाह की जानिब से इरशाद हुआ कि ए नूह, हमने तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब किया है, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल कर दिया है। गौर से इस किस्से को सुनिएगा, यह कुरानी किस्से हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ रिवायतों के जोर पर। कहा अब खुदा तू इन पर लानत कर और इन पर अजाब नाजिल कर। तो खुदा बंदे आलम ने कहा कि नूह तेरी दुआ अब मुस्तजाब हुई है, मैं इन पर अजाब उतारूंगा लेकिन एक शर्त से, मैं ये चाहता हूँ कि पहले तू एक दरख्त को चढ़ा, यानी प्लांट ए ट्री, और जब ये दरख्त बन जाए चढ़ जाए तो फिर उसके बाद मैं अपना अजाब जो है तेरी इस कौम पर भेजूंगा और उतारूंगा। लिहाजा हुक्म इलाही था और खुश हो गए कि अब दुआ बारगाह इलाही में मुस्तजाब हुई है, पौधा लगाए और दरख्त चढ़ाने लगे। अब आप जानते हैं दरख्त को एक रात में तो नहीं चढ़ाया जाता है, 50 साल गुजर गए, 50 ईयर्स गुजर गए, और बाकायदा ख़ुद 50 सालों तक नबी नूह जो है उस दरख्त का ख्याल रखा करते थे और उसे चढ़ाते थे, पानी डालते थे, उसका ख्याल रखते थे, यहाँ तक के कहा जाता है कि ही बिकेम वेरी क्लोज टू दैट ट्री। जाहिर है जो लोग गार्डनिंग में शौक़ रखते हैं वो इस बात को ज़्यादा समझेंगे। 50 साल के बाद खुदा की जानिब से ये इरशाद हुआ कि नूह अब तुम इस दरख्त को काटो। तो जनाब नूह रोह पर है, कहा परवरदिगार बड़ी मेहनतों से मशक्क़तों के साथ इस दरख्त को मैंने चढ़ाया था और अब दिल भी लगा है इस दरख्त से और तू कह रहा है कि मैं उसे काट दूँ। कहा नूह वह एक दरख्त को तूने चढ़ाया और अब तू काट नहीं सकता और तू चाहता है कि मैं अपनी मखलूकात को तबाह कर दूँ, अब तुझे वैसा ही करना पड़ेगा जैसे तुझे हुक्म दिया गया। हुक्म इलाही था। उस सहरा के अंदर, उस लेज़त के अंदर जहाँ नूह थे, उन्होंने उस दरख्त को काटा। हुक्म ये था कि दरख्त को काट के फिर उसी से तुम एक कश्ती बनाओ, यानी आर्क बनाओ, एक सफीना बनाओ। तो उस दरख्त को काटे सहरा के अंदर, अब बैठे हैं सहरा में, हाँ कश्ती तैयार कर रहे हैं, हाँ कश्ती मना रहे हैं, अब लोगों का आना जाना है, देख रहे हैं नूह को और आपस में हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका दिमाग ठिकाने नहीं, ये अब ज़ईफ़ हो गया है, बूढ़ा हो गया है। सहरा में रहकर ये कश्ती मना रहा है कि जहाँ न कोई समंदर है न कोई दरिया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन जब कश्ती तैयार हो गई तो खुदावंद आलम कह रहा है कि फ़ान

जो तुम मांग रहे हो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। तो उसने बारगाह इलाही में दुआ की, बस यहाँ उसने दुआ की और वहाँ ये सब लोग जो थे उन्होंने देखा, उन्होंने सुना एक चीख की आवाज़ जो उस पहाड़ में से आई, ऐसी चीख जो उस हामिला औरत की चीख होती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। और शिगाफ्त हुआ, हाँ फटा वो पहाड़, वो माउंटेन, और उसमें से बिल्कुल वही ऊँटनी निकली, वही केमल, शी केमल निकली जिसके बाल सुर्ख थे और जो 10 महीने की हामिला थी जैसे इन्होंने ख्वाहिश की थी। ये देखकर सब चौंक गए और उन्होंने सालेह से कहा कि तुम्हारा खुदा तो बहुत जल्दी जवाब दे देता। अब यूं करते हैं, जाते हैं और लोगों को इन्फॉर्म करते हैं ताकि सब मिलके तुम्हारे खुदा पर ईमान लाए। रिवायत में है कि उस पहाड़ को छोड़ के अपने शहर तक पहुँचे, सिर्फ 6 रह गए ईमान पर, बाकी सब ने कहा कि ये सालेह ने हम पर जादू किया है जी। अब वहाँ आए पहुँचे, 6 तो ईमान लाए, अब ऊँटनी भी आई, हाँ तो शहर वालों ने ऊँटनी को भी देखा। अब देखिए यहाँ दारुस्सलाम मुंबासा आप जाइए तो यहाँ क्या है कि लोग माशाल्लाह मेहमान नवाजी में काफ़ी आगे हैं, माशाल्लाह, यूं ही तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। यहाँ अक्सर जब हम आते हैं दारुस्सलाम या मुंबासा जाते हैं तो हमारे दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं, कुछ मोमिनीन हैं, अक्सर हम फ़ोन करेंगे कि आप कहाँ हैं, घर पे बैठा हुआ हूँ, चाय पीने के लिए कब ऑफिस में तशरीफ़ है, घर की तो बात नहीं है, ऑफिस में कब आएंगे भाई, हाँ आइए आप हमारे साथ चाय पिए। आज सुबह को किसी ने फ़ोन किया, शेख साहब आप फारिग हो तो हम जाएँ एटी शॉप में कबाब खाने के लिए, होता है या नहीं है। तो मैंने कहा कि फ़िलहाल तो मेरे लिए, मगर ये लोगों के दरमियान में है और ये यहाँ इसी जगहों पर हम देखेंगे। हमारे यहाँ इंग्लैंड के अंदर ऐसा नहीं होता है जी, वहाँ एक जुमला इस्तेमाल होता है, देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच, यानी अगर कोई आपको कुछ खिलाए तो ज़रूर इसके पीछे वो कोई तवक्को रखता है, कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। खुदा वज़्ज़े आलम ने इस दुनिया के अंदर तमाम चीज़ें हमें मुफ्त में दे दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब वो करता है देर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच। यार रखिएगा, खुदा ने कहा ये ऊँटनी को मैंने जाहिर किया, अब होगा ये कि तुम्हारे नहर से एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन लोग पिएंगे। जिस दिन ऊँटनी पानी पिएगी उस दिन लोग उस नहर से पानी नहीं पिएंगे, और जिस दिन लोग उस नहर से पानी पिएंगे ऊँटनी पानी नहीं पिएगी। लेकिन रहमत खुदा देखिए, जिस रोज ऊँटनी पानी पिएगी और लोग पानी नहीं पिएंगे, ऊँटनी के दूध से सैराब होंगे, ऊँटनी के दूध से सैराब होंगे। हुआ ये कि हसद और तकब्बुर के बिना पर कुछ लोगों ने मिलकर उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, ज़बह कर दिया, मार डाले। इसके बावजूद भी कहा गया कि 3 दिन की मोहलत तुम्हें दी जा रही है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। जब तौबा और इस्तिग़फ़ार उन्होंने नहीं की, फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, खुदा ने उनको हलाक और तबाह कर दिया। और फिर इस वाक़े को बयान करने के बाद जनाब सालेह के वाक़े को किस तरह खुदा ने उनको हलाक कर दिया, खुदा कह रहा है इन फ़ी ज़ालिका लआया, यकीनन इसके अंदर हमारी निशानी है। हाँ वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो ईमान नहीं लाते। फौरन सालेह के बाद जनाब लूत का जिक्र आया है, खुदा बंदे आलम जनाब लूत का जिक्र कर रहा है कि कौम लूत ने रसूलों को झुठलाया। देखे वही अंदाज, हर नबी के लिए वही अंदाज। वइज़ क़ाल लहुम अखूहुम लूत अला तत्तकून, जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा, वही बात हो रही है, अला तत्तकून, मैसेज समझे, हाँ ये कुरान की आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ मैसेज, उस पर गौर करें। अला तत्तकून, क्या तुम खुदा से नहीं डरते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं। सबसे बेशरम कौम, सबसे बेशरम कौम, कौम लूत, यानी ये लोग अपनी जिंसी ताल्लुकात मर्दों के साथ रखा करते थे ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप, जिसे आज के ज़माने में होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है, इसकी इब्तिदा यहाँ से हुई। अतअतूनज़्ज़ुकरान मिनल आलमीन, खुदा कुरान में कह रहा है इनसे कि क्या तुम मर्दों के पास आते हो शहवत परस्त के लिए, जबकि खुदा ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ रखी है, उसने खल्क किया है तुम्हारे लिए, इसका जिक्र आया है। फिर भी खुदा ने जनाब लूत को उनके पास भेजा उनकी हिदायत के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए।

और फिर उसके बाद इससे भी आगे बढ़े, क्या किए, अमानतों के अंदर खयानत करने लगे और आपस में लोगों के दरमियान झगड़े कराने लगे। हाँ, ये भी एक फन है, एक आर्ट है, लोगों के दरमियान में झगड़ा कराना फन है, एक आर्ट है, खास तौर से हमारे ज़माने में। और ये मुसीबत है कौम के अंदर के तिजारत में लोगों को धोखा देना या अमानतों के अंदर खयानत करना। देखिए, मैं अब जिस पेशे में हूँ, जो मेरा फील्ड है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, शिकायत करते हैं, कुछ ईमेल के ज़रिए से, कोई व्हाट्सएप के ज़रिए से, कोई टेलीफोन के ज़रिए से। और मजलिसों के सिलसिले में हम जब जाते हैं तो लोग आके शिकायत करते हैं कि कौम के अंदर हमारी ये हालत हो चुकी है कि हमारे पैसे खाए जाते हैं, हमको कोई देता नहीं है। देखिए कहाँ तक सच है, कहाँ तक, एक की बात को सुनो भाई, इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले को भी हम सुने कि वो क्या कह रहा है। लेकिन हकीकत ये है मेरे दोस्तों कि अमानत में खयानत करना, चोरी करना जो है, ये मत समझिएगा कि तुम बच के चले जाओगे, ये मत समझिएगा। लोग हैं कि अमानात में खयानत करते, लोगों के हुकूक को दबाते हैं और फिर उस माल से हज और उमरा को जाते हैं, ज्यारात के लिए जाते हैं, ये समझते हैं कि ये कबूल होगा, होता है या नहीं। हाँ, जाते हैं, हाजी बन के आते हो, हम तो इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए गए, भाई सो चूहे को मार के चला बिल्ली हज पढ़ने, हाँ, या हलवाई के दुकान पे नाना जी का फातिहा पढ़ना, ऐसी बात हुई है नहीं। हाँ, तो इससे बचे। ये अस्हाबुल ऐका का तरीका, अमानतों में खयानत। जनाब शुएब को उनके पास भेजा गया, लेकिन जब उन्होंने जनाब शुएब को जुठलाया है तो उनको भी खुदा बंदे आलम ने हलाक किया। कैसे हलाक किया, इसका भी जिक्र आया है, फअस्क़त अलैना किसफन मिनस्समा इन कुंत मिनस्सादिकीन। हाँ, अस्हाबुल ऐका ने जनाब शुएब से कहा कि अगर तू सच्चा है तो फिर आसमान के एक टुकड़े को हम पर घिरा, ये कुरान की आयत है, आसमान के एक टुकड़े को हम पर घिरा। तो हुआ क्या, किस तरह खुदा ने उनको बर्बाद किया। हा? एक शदीद गर्म हवा चली और गर्मी, इतनी गर्मी कि लोग न घर के अंदर बैठ सकते थे न बाहर बैठ सकते थे, और बेजार आ गए, कुछ अरसे तक इसी हालत में रहे। फिर एक रोज उनकी नजर बादल पर पड़ी कि बादल आ रहा है उनकी तरफ। अब चूंकि उस गर्मी से वो बेजार आ चुके, वो ये समझे कि ये वो बादल है कि जिससे पानी बरसेगा, तो सब के सब आ गए उस बादल के नीचे। और उनकी अपनी जो ख्वाहिश थी, फस्कत अलैना किसफन बिना समा, आसमान के एक टुकड़े को हम पर गिरा अगर तू सच्चा है, वही हुआ, पत्थरों की बारिश हुई और सब के सब हलाक हो गए। और फिर खुदा कहता है इन फी ज़ालिका लआया, यकीनन इसके अंदर हमारी निशानी है, वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, लेकिन लोगों की अक्सरियत जो है वो मोमिनीन नहीं, ईमान नहीं लाते। मेरे दोस्तों, ये है वो पांच नबियों का जिक्र जो सूरह अश-शुअरा के अंदर इख्तिसार में आया है, मैंने आपके साथ शेयर किया इन वाकयात को, इन कहानियों को। इन कहानियों से हमें क्या मिलता है सीखने को, बहुत कुछ मिलता है। मैंने कुछ बातों पर तो मैंने रोशनी डाली है, बहुत कुछ मिलता है सीखने को, है या नहीं, कि खुदा ये एक की परस्तिश करो, उसकी ज़ात से तुम शिर्क न करो, रसूलों को झुठलाओ नहीं, डू नॉट ह्यूमिलिएट देम, हाँ, डू नॉट बिलाई देम, उन्हें झुठलाओ नहीं, है या नहीं। फाहिशात से बचो, यानी इनडिसेंट एक्ट से या इनडिसेंसी से बचो। कहाँ आया जनाब लूत के वाक़े में इनडिसेंसी, कुरान के अंदर जिना और लबात को कहा गया है, एडल्ट्री एंड होमोसेक्सुअलिटी को इंडिसेंसी कहा गया है। हाँ, तो तुम झुठलाओ नहीं, इंडिसेंसी, अमानत में खयानत मत करो, लोगों के दरमियान में तुम झगड़े मत करो। तो ये बहुत से जो लेसन्स हैं, ये लेसन सब हमें जो है हम डिराइव करते हैं, निकालते हैं इन पाँच वाक़ात में से। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आज की मजलिस में ये जो लेसन्स हैं जो आपने देखे हैं सुने हैं, मैं ये चाहता हूं कि इनको आप निकाल के आज के ज़माने में लेकर आए हैं और देखें कि आज क्या हो रहा है। ये सब कुछ जिनका जिक्र आया है, देखिए हर एक सबक जो है एक मौजू है, एक सब्जेक्ट है, और मेरे पास वक्त की कमी है, मैं उन तमाम बातों को आप लोगों की खिदमत में पेश नहीं कर सकता। लेकिन इन तमाम बातों में से एक अहम बात के जिसमें आज कौम के लिए अहम पैगाम होगा वो शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे कबल एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।

नाम और एकेडमिया के नाम से देखे दुनिया के अंदर मैं ऐसे मुल्क से आ रहा हूँ कि जहाँ बहुत से चीज़ों का हमें एहसास होता है। उन्होंने देखा कि भाई आलम इस्लामी के अंदर शिया जो है उनका पॉपुलेशन कम है बनिस्बत गैर शिया के, हम बहुत कम तादाद में हैं, हार्डली 18% 20% उनके मुकाबले में, लेकिन जो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं उन पर कब्जा करना आसान है, ये जो 20% है मुश्किल है क्या इनमें है क्या इनमें? देख लीजिए मिडल ईस्ट के अंदर, मैं नाम नहीं दूंगा कंट्रीज की, और आप तो जानते हैं इशारों से बात कर रहा हूं मैं कि इन पर तो हमने कब्जा किया, हमारे सब पपेट्स बैठे हुए हैं, हम जैसे चाहते हैं वो करते हैं, सजदा करते हैं हमारे आगे, इनमें क्या है कि ये हमारे हाथ में नहीं आते? तारीख को उठाकर देख लीजिए, है कम तादाद में। सैयद शिराजी का जो रेवोल्यूशन था, टोबेको रेवोल्यूशन ईरान के अंदर, याद होगा आप लोगों को, जो नहीं जानते वो गूगल करके देख लें, आयतुल्ला गूगल है हमारे पास, देख लीजिए उठा के। उसके बाद 1979 का रेवोल्यूशन ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर आके देखे तो किस तरह शियों ने फेंका है दुश्मनों को बाहर, हा फेंका। और आज आलम इस्लामी के अंदर सबसे पावरफुल ये है माइनॉरिटी के बावजूद, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, चाहे तुम कुछ भी कहो, वेदर यू हैव पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियन, अपनी तरफ रखो, हकीकत को देखो, तुम्हें मुबारक तुम्हारी ओपिनियन, ये हकीकत। इनमें है क्या? बाकायदा फैकल्टीज खोले गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर टू स्टडी शियाइज्म, 10-20 साल के अंदर ये काम हुआ है, और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मजहब तशय शिया इतना आशरी की बात हो रही है, ये इतने पावरफुल हैं और आज तक सर्वाइव हुए हैं 3 चीजों के बिना पर। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ तकलीद एंड मरजाइयत, इनके पास लीडर जिंदा है, ये उनका रिसर्च है। दूसरा खुम्स, मजेदार बात है ना, जो लाइफ लाइन है मरजाइयत की, हाउज़े इल्मिया की, इट इज बिकॉज ऑफ खुम्स दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस उलमा एंड मुश्तहिदीन ऑफ दैट कैलिबर, खुम्स, हाँ याद रखें। देखिए मैं 5 रोज में यहां आया हूं, 3 से 4 लोग मुझे पकड़े बाहर और बात छेड़ी मेरे साथ, देखिए किस तरह, जकात के बारे में, आप तो जानते हैं मैं क्या कहता हूं, यही की बात है आपके दारुस्सलाम, लेकिन खैर जकात के बारे में आपका क्या व्यू है? मैंने कहा मैं मुश्तहिद नहीं हूं कि मेरा कोई व्यू हो उसके बारे में, अलबत जो उन्होंने कहा है सारे तस्लीम खम है, जो उन्होंने समझा, कहा ये गलत कर रहे हैं, कुरान मजीद के अंदर इतनी आयतें हैं, हमको सब जहन्नम में जाएंगे, वो भी जहन्नम में जाएंगे। 30 सालों से मैं कुरान का मुतालिया कर रहा हूं, ये शख्स उन अशख़ास में से एक ने मुझसे कहा, 30 साल 30 ईयर्स से मैं कुरान का मुतालिया कर रहा हूं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़कात वाजिब है वरना मैं जहन्नम में जाऊंगा, आपकी क्या राय है? और यह उलमा क्यों नहीं करते? नाउ ही वॉन्ट्स टू थ्रस्ट हिज व्यू डाउन माई थ्रोट एंड ही वॉन्ट्स टू एनफोर्स दिस ऑन पीपल हु हैव स्पेंट देयर एंटायर लाइफ इन एक्वायरिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, यानी जो आयतें इसने 30 साल में पढ़ी वो 60-80 साल में नहीं पढ़े होंगे, और शुरू की उसने गालियां देने को, उससे देखो बात ज़कात की गाली दे रहे हैं मुश्तहिदीन को, मैंने कहा मैंने कहा कि देखे ज़कात चीज ऐसी है, उनका अपना ओपिनियन है, उनका अपना व्यू है, लेकिन आप मानते हैं कि देना है, दीजिए आप बगैर गाली दिए हुए, नीयत अच्छी होगी खुदा आजर देगा, सच बात है या नहीं? Why do you have to abuse them? दीजिए। मैंने कहा जरा ये तो बताए आप देते हैं ज़कात? कहा आई एम नाउ थिंकिंग, यानी 30 साल के रिसर्च के बाद मैं जानता हूं क्या होने वाला है मजलिस के बाद, निकलेंगे व्हाट्सएप,
ग्रुप्स में लिखे जाएंगे, भाई इमामों को नहीं छोड़ा, मुज्तहिदों को नहीं छोड़ा, मैं तो अदना सा तालिबे हूँ, मेरे लिए तो बाई से शरफ

को एम्पायर्स को डिस्ट्रॉय करता है। मेरे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर अस्सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि खुदा कहना चाहता है नन खुसुहा बिज़हाब उलमाइहा व फुकहाइहा व खियारहा, कि खुदा ऐसे मुआशरे से ऐसी कौम से उलमा को उठा लेता है, फुकहा को उठा लेता है और नेक बंदों को उठा लेता है। जब ये उठ जाते हैं तब तबाही आती है। अब आप फैसला कीजिए इनसे हटना है या इनके साथ रहना है। फैसला हो क्या मांगे वमा अलैना इल्ला अलबला। My duty was to convey. उलमाए इस्लाम में से वो लोग के जो साहिबाने तक्वा हैं, जिनके अंदर तक्वा इलाही की सिफत है, हमारे इमामों ने उनकी कदर की है। याद रखिएगा अबू हमजा सोमाली जैसी शख्सियत चौथे इमाम के जमाने में आप रहे, पांचवें इमाम के जमाने में, सातवें इमाम के जमाने तक, हाँ ये हमारे इमामों के लिए कैसे थे? जैसे सलमान पैगंबर के लिए थे। ऐसा अजीम मर्तबा इमामों ने तारीफ की है। और पांचवी तारीख है माह मुहर्रम की, हबीब इब्न मजाहिर को इमाम हुसैन ने मर्द फकीर कहकर पुकारा। इस्लाम के अंदर कदर है उलमाए इस्लाम की, इमामों के नजर में ऐसे लोगों की कदर और कीमत है। हार बाबे आजाद आज तस्करा हबीब इब्ने मजाहिर असदी का। हबीब की अजमत का अंदाजा लगाना हो तो तारीख का मुताला कीजिए। मौला मक्के से निकले, इराक की तरफ चले, रास्ते में हर मंजिल पर रुके, तारुफ कराया, लोग आपके साथ हुए चले, लेकिन मौला बार बार उनसे कहते रहे कि देखो जहां मैं जा रहा हूं वहां मौत है, चले जाओ, हुसैन को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेयत तुमसे उठा ले रहा हूं, चले जाओ। करबला है शबे आशूर को आपने चिराग को गुल किया, कहा चले जाओ, हुसैन को तुम्हारी जरूरत नहीं। आज़ादारो हबीब की शख्सियत को पहचान। इमाम ने कई बार अपने साथियों से कहा कि चले जाओ, हुसैन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। हबीब उस बा अजमत शख्सियत का नाम है जिसे इमाम ने खत लिख के बुलाया, हबीब तुम आओ, हबीब हबीब। उम्र में हमारे इमाम से बड़े थे, 20 साल का फासला था, 25 years, 20 to 25 years तारीख में हमें मिलता है। लेकिन रिवायतों में हमें मिलता है कि एक रोज खुद की जवानी में अपने पदर बुजुर्गवार जनाब मजाहिर असदी के साथ मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए, और जो ही शहर में दाखिल हुए क्या देखा कि पैगंबर का गुजर हो रहा है, एक हाथ को पकड़े हसन है, एक हाथ को पकड़े हुसैन है, बाप बेटे दोनों आए, सलाम अर्ज किए, और बाद सलाम जनाब मजाहिर असदी पैगंबर के साथ हम कलाम हुए, गुफ्तगू में रास्ते में चलते जाते थे, गुफ्तगू करते चलते जा रहे थे कि चलते चलते एक मरतबा पैगंबर रुक गए, मुड़कर हबीब से कहा, हबीब जरा करीब आओ। अब जो हबीब करीब आए हैं तो रिवायत का जुमला है, फतकब्बल बैना आइनैही है, हबीब के माथे का बोसा लिया। जनाब मजाहिर ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे ने कौन सी ऐसी नेकी की थी कि आपने ये सुलूक उसके साथ किया? कहा कि ए मजाहिर तुझे पता नहीं, लेकिन हम बातें करते जा रहे थे, चलते जा रहे थे कि मेरी नज़र तेरे इस हबीब पर पड़ी, मैंने क्या देखा कि जहाँ जहाँ मेरा बेटा हुसैन कदम रख के उठाता था, कदम के खाक को उठाकर हबीब अपने सर पर रखते थे, ए मजाहिर मुबारक हो, तुम्हारा ये बेटा मेरे इस नवासे की नुसरत के लिए करबला जाएगा। आज़ादार और हबीब कूफे में थे, रिवायतों में मिलता है कि एक मरतबा बाजार में खिजाब खरीदने के लिए आए हैं तो क्या देखा कि अहले कूफा जमा हो रहे हैं और अपनी अपनी हथियारों को तैयार और दुरुस्त कर रहे हैं।
اتنے میں قریب سے مسلم ابن اوسجا کا گزر ہوا، حبیب نے مسلم کو قریب بلایا اور پوچھا کہ

दुश्मन मैदान में नहीं जीत पाया, नहीं जीत पाया मैदान में। अब दूसरा उसका हरबा क्या है, क्योंकि आपको पता है कि रहबर की शहादत के बाद उम्मत एक हो गई, अहले सुन्नत हो, जितने भी फिरके हों, हत्ता दूसरे मुसलमान भी नहीं है, दूसरे भी हैं, उनको भी समझ में आ गया है कि हम एक तरफ पड़े, खासतौर पर उम्मत एक हो गई है, तशय्यो हो, अहले सुन्नत हो, बरेलवी हो, सब एक वहदत की तरफ बढ़े। दुश्मन का क्या काम हो, जब वो सामने हार गया तब वो क्या करेगा, अब वो सोशल मीडिया पे आ गए, अब वो सोशल मीडिया के जरिए से जहनों को कमज़ोर करेगा, तफरका पैदा करेगा, हादसा पैदा करेगा। और मैंने आपको पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आखिरी ज़माने में फितने ऐसे होंगे कि मोमिन चेक किया जाएगा, उठखा पटखा जाएगा, खालिस रह जाएगा, जो ज़ईफ होगा वो गिर जाएगा। ये फितने का दौर है, आपके सामने सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चलाते हैं, वैसे वो कट कुट करके बयान चलाना तो वैसे ही माहिर है पब्लिक। समझने की कोशिश करें, फितनों का शिकार ना हो, उम्मत में तफरका ईजाद ना करें। ये जो जंग है, ये जंग वही निज़ाम इलाही की जंग है, इलाही निज़ाम है, वही निज़ाम के जो आखिरी नबी लेकर आए, वही निज़ाम जो अलवी निज़ाम है, अलवी निज़ाम है, ये निज़ाम वही है कि जो मौलाए कायनात, क्यों, क्योंकि ये अली के नौकर हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इस मकतब के शागिर्द हैं, हमें इस मकतब ने सब कुछ दिया हुआ है। अब दुश्मन क्या करेगा, दुश्मन कहीं ना कहीं तफरका ईजाद करना पड़ेगा। ये विलायत, ठीक है, बहुत से लोग पॉलिटिकल, मैंने पहले भी कहा कि नहीं समझते, ना समझे, विलायत फकी उसी निज़ाम अलवी के नीचे एक छोटा सा सिस्टम है। कहाँ तक, जब तक वो असली वारिस आने वाला है, असली हक, लब्बैक या महदी, असल वारिस, असल निजाम उसने तबईन करना है। क्यों, क्योंकि वो अल्लाह का नुमाइंदा है, असल हाकमियत उसी की है। हम 12 इमाम के मानने वाले हैं और हमारी या 12 इमाम के मानने वाले हैं, हमारे इमाम मासूम है, ये हमने कुरान से भी साबित किया हुआ है, हमारी डेफिनेशन में 12 इमाम है, हमारा इमाम, देखें हमारी कामयाबी क्यों है, क्योंकि हमारा इमाम जिंदा है। तो हम जब अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं तो ये सब वही है जो हमें अपने इमामों से मिला है, और हमें अपने इस सिस्टम को, जो बहरहाल हमारे पास, अब जाहिर है उस सिस्टम को कोई ना कोई तो चलाएगा, कोई ना कोई तो लीड करेगा, तो चाहे वो शहीद पहले इमाम खुमैनी थे, फिर शहीद आयतुल्ला खामनाई थे, और जाहिर है अभी जो है वो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई है, मुश्तैद है, उसके नीचे है, उसी के जरिए से अपने आप को अपने आका तक इस परचम को पहुंचाना है, असल परचम को वही पहुंचाना है। आपके सामने इंटरनेट पे वीडियो मशहूर होगी जब रहबर ने एक दफ़ा जुम्मे की खुतबे में बोला कि असल आका, असल मालिक इस इनकलाब के आप हैं, मैं अपने इस बदन नाकस के साथ इस परचम को आपके लिए लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो असल सिस्टम वही है, दुश्मन उसी अलवी निजाम से घबराता है। जब उसे पता चलता है कि वो मैदान में नहीं लड़ सकता तो वो सोशल मीडिया पे लड़ता है, इख्तलाफ पैदा करेगा, आपस में लड़ाएगा, तफरका ईजाद करेगा, ताकि लोग ज़ईफ हो, घबरा के जाने मोहतरम दुश्मन। आज दुश्मन आप देखें ना, इस निजाम और इस जंग ने सारे उस शहर को तोड़ दिया, उस खौफ को ख़त्म कर दिया कि जो आप सारी ज़िंदगी हॉलीवुड में देखते थे कि इतनी बड़ी फ़ौज है, इतना बड़ा निज़ाम है, इकोनॉमिकल इतना बड़ा है, फलाना है, ये है, वो है, वो है, कहाँ गया? खौफ था। ये अली वालों की ताकत है कि जब वो मैदान में आए तो भी औच पे चले जाते हैं, जब सजदों में आए तो भी सजदों को कमाल पे ले जाते हैं। वो भी
عقلانیت ہے, یہ دین عقل کا دین ہے. آپ اپنے عقل کو استعمال کریں, کوئی بھی چیز آئے. ہم نے تو پہلے بھی ہمارے علماء کی میٹنگ

जो ही हमने उसके अंदर ही कोई आलिम अगर एक दूसरे की बात होती है, इंसान है, हो जाए किसी नोआ खान से कोई बात हो जाए, इसको मजलिसों की जीनत ना दे, इख्तलाफ पैदा ना करें आपस में। असल हदफ इमाम हुसैन तक बढ़ना है। हो सकता है कोई नोहे के जरिए से बढ़ा है, कोई मातम के जरिए से बढ़ा है, कोई जिक्र के जरिए से बढ़ा। असल हमें अपने आप को इसमें मुत्तहिद रखना है। दुश्मन पूरी कोशिश में है कि उम्मत के दरमियान इख्तलाफ पैदा किया जाए। सिस्टम को समझें आप, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को, जो इस टाइम हालात हैं, जिस तरह पाकिस्तान, मैंने आपकी खिदमत में कल भी अर्ज़ किया कि जिस तरह पूरी कोशिश कर रहा है, कोशिश किस लिए कर रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इस्लाम है और बहरहाल वो इस्लाम का किला है पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हुआ है। अब ज़ाहिर है हुकूमत ने मसाइल अपनी जगह पर, वो हमारी बहस नहीं है, लेकिन अभी आप देखें कि जनरल साहब हो गए या मोहसिन नकवी साहब हो गए या प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, क्यों चाह रहे हैं कि ये सिस्टम बेहतर हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस आग को ठंडा नहीं किया तो ये आग इधर भी लग सकती है। और दुश्मन जानता है अगर कल को कोई मुल्क खड़ा हो सकता है तो वो पाकिस्तान है, तो इसलिए कभी कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे असल ढांचे को, हमारे वतन के नुकसान पहुंचाए। जो भी आपके सामने, हमें नहीं पता होता, बाज़ औक़ात इतनी लेयर से काम होता है सोशल मीडिया पे कि आपको मुझे पता भी नहीं चलता कि पीछे दुश्मन कौन है। बहुत ज़रूरी है, हसासियत है, इस टाइम पूरी दुनिया हसास हुई भी है। और परचम तशय्यो और अली का परचम, अब्बास का परचम फजाओं में, हवाओं में लहरा रहा है यार। ये बहुत जरूरी है जाने, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अकल, इंटेलेक्चुअल होना। ये जाहिरी इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये आसान नहीं है कि एक निजाम पूरी दुनिया के इकोनॉमिकल निजाम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इंपीरियलिज्म, जितने भी इज्म है, सबसे अलवी निजाम लड़ रहा है। लेकिन जाहिर है यार, उसके लिए इंसान को अतात करनी पड़ती है, नहजो बलागा खोलना पड़ता है, अकल की हदीसें देखनी पड़ती है। वो हदीस, बहुत सारी हदीसें मैंने पहले भी आपके खिदमत में अर्ज किया, जाने मोहतरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अकल इंसान की इनहेंस हो, बढ़े, ताकि चीजों को जज कर सके। आलम अकल जो है वो मुत्तसिल है अर्श इलाही से। इंसान जितना अपने आप को बेहतर करता है उतना उसके ऊपर डाउनलोड होता है, तभी वो इस सिस्टम को चला सकता। जिसके पास अकल है वो खौफ नहीं करता, कोई खौफ खतर नहीं है उसको, क्योंकि वो जानता है कि असल जो घर है वो आखरत है, दुनिया नहीं है। तो अपनी दुनिया को आखरत के लिए बेचता नहीं है। वज़ाने मोहतरम, बहरहाल इंसान जो है अल्लाह ने उसे खल किया, और कुरान के अंदर भी कई जगह इन परवरदिगार अपने बंदे को कह रहा है कि तुम दर्क नहीं करते, तुम फिक्र नहीं करते, तुम तदब्बुर नहीं करते। दावत दे रहा है परवरदिगार कि सोचो, तफक्कुर करो। आज का सोशल मीडिया है, ये इंसान को सोचने की सलाहियत नहीं दे रहा। आप सोचते, आप कितनी देर सोचते, आप कितनी देर तफक्कुर करते? सबसे बेहतरीन तफक्कुर नमाज के बाद है। सबसे बेहतरीन तफक्कुर नमाज के बाद, जब आप तस्बीह हजरत ज़हरा पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन तफक्कुर, सबसे बेहतरीन ताकीबात तस्बीह। क्यों? जब आप तस्बीह पढ़ते हैं, 34 दफा कहते हैं अल्लाह अकबर,

तू सबसे बड़ा है, तेरे से बड़ी कोई जात नहीं। 34 दफ़ा इंसान, हालांकि खुदा को काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, राज इसमें है, इसमें राज है, लेकिन इंसान को तफक्कुर की दावत देता है। क्या हम वाकई में तफक्कुर करते हैं? हमारी तो तस्बीह भी यूँ ही है, थक थक थक थक अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा कि परवरदिगार मैं तेरा शुक्र करता, मैं तेरा शुक्र, हम तेरे लिए, हम तेरे लिए। अगर वाकई इंसान तफक्कुर के साथ थोड़ी देर ये तस्बीह पढ़े, सुभान अल्लाह, मुनज़्ज़ा है तू, पाक है तू, थोड़ी देर आप इसको प्रैक्टिस करें, आपके वजूद में तहव्वुल आ जाए। जब आप मुसल्ले से उठेंगे तो आप कुछ और हो। तफक्कुर है ना, फिक्र है, इंसान सोचता नहीं है। फैज़ाने मोहतरम आयतुल्लाह शमसुद्दीन बयान करते हैं, शुक्र पर मुझे ये वाकया याद आया कि मैं मस्जिद मुकद्दस मौला की ज्यारत पे मुशर्रफ हुआ, ज्यारत पे गया, तो ज्यारत पे जाकर हर दफ़ा मैं मौला से मुझे कुछ अता करें, कुछ मानवियत अता करें, बहुत इसरार करूं हर ज्यारत में, और मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। आयतुल्लाह बहजत से इंतकाल हुई, अच्छा आयतुल्लाह बहजत के ये शागिर्द भी थे, आयतुल्लाह बहजत गर्मियों के महीनों में मस्जिद मुकद्दस होते थे, उनसे मिला, उन्होंने भी मुझे कुछ दिया, लेकिन मैं काने नहीं हुआ, यानी मेरा दिल नहीं भरा, बार बार इसरार पे इसरार, मुझे कुछ दे, मुझे कुछ दे, और ये भूल गया कि ये खुद ज्यारत खुद बहुत बड़ी इनायत है। ये मेरे जहन से ही था, अचानक से रात को मेरे शिकम में दर्द हुआ, शदीद दर्द, इतना दर्द हुआ कि मुझे 15 साल पहले जब मेरे दर्द हुआ था तो मुझे याद आया, और उस वक्त मैंने कहाँ इलाज नहीं करवाया, मुल्क में, जर्मनी में, ठीक कहाँ हुआ, कहा जब मैंने आबे जमजम पिया, रसूल के रोज़े पे गया तो मैं ठीक हुआ, और ऐसा ठीक हुआ कि उसके बाद मैंने कभी परहेज भी नहीं की, ऐसा मुझे दर्द हुआ। रात को मुझे नींद नहीं आई, मैंने वापस रखते सफ़र बांधा, गुम आया, सो नहीं पाया, तड़पता रहा, अचानक से रात को एहसास हुआ कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तलबी तो नहीं कर ली इमाम रज़ा से, कुछ ज़्यादा मांग तो नहीं लिया। वहीं मुझे शर्मिंदगी हुई कि जितना उन्होंने मुझे दिया हुआ है वो मेरे हद से ज़्यादा है, मैं तो उसका शुक्र अदा नहीं कर रहा, तो मैं और इनसे क्या मांग रहा था। कहा वहीं मैंने इमाम रज़ा से तवस्सुल किया और फरमाया मौला गलती हो गई, जो आप बेहतर समझते हैं दे, जो मेरे लिए बेहतर नहीं उसे मुझे ना दे। सो गया, सुबह उठा, दर्द ख़त्म, 2 दिन बाद एहसास हुआ जैसे कभी दर्द था ही नहीं। फिर मैंने इम्तिहान भी किया, जो जूस शरबत होता है वो फल वल खाए, दर्द नहीं हुआ। जाने मोहतरम शुक्र बहुत ज़रूरी है, इंसान बेजा तलब करता है बाज़ों का, खुदा की मारक भेजा ये दे दे वो दे दे, मांगना बुरी बात नहीं है, खुदा कुरान में कहता है मांगो मैं दूंगा, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान, आप यकीन करें जो उसको दिया हुआ है अल्लाह ने, क्या क्या दिया हुआ, कितनी नेमतें दी हुई है, और ख़ासतौर पर इंसान अपने से नीचे देखे तो उसको ज़्यादा शुक्र करना चाहिए, और ख़ासतौर पर ये जो जिक्र दिया है, ये जो इन अय्याम में खुदा ने हमें तौफीक दी है, ये तौफीक बहुत बड़ी है। जाने मोहतरम पहले भी मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, ये तो रोज़े महशर पता चलेगा कि ये जो आंसू है इसकी कीमत कितनी है। रिवायत में है रोज़े महशर तमाम आंखें गिरिया करेंगी सिवाय उन आंखों के जो हुसैन के लिए होती थी, सिवाय उन आंखों, यानी वो आलम खूब आलम ही परेशान का आलम है, परेशानी का आलम है, वो हम बहरहाल शुक्र करें जाने मतलब। और इंसान जो है वो बहरहाल इस कैफियतों को अपने अंदर बेहतर करे कि जो इंसान की अकल को अपग्रेड करती है, अपनी अकल को अपग्रेड करवाए। जाने मोहतरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद सलाम, अकल की बहुत सारी निशानियां हैं, मैं पहले 45 में वो बयान कर चुका हूँ।

से उठाना है। आसान है कहना, हुसैन जानते हैं कैसे उठे। आवाज रह भी आई, हुसैन बुलंद हो जाओ। मुसीबत यहां खत्म ना हुई। ये बच्चा 3 दफा शहीद हुआ। शामे गरीबा, इन्होंने बदन गिनना शुरू किए। कहा एक छोटा बच्चा भी तो था। किसी ने कहा खैमों के पीछे रात है, हाथों में नेजे उठाए, जमीन पे घोपना शुरू किए। एक नेजे में मैं माफी चाहता हूं इमाम ज़मान, वो मां 6 माह तक साए में ना बैठी, जिंदगी गुजार दी उसने। मां है, मैं तीसरी शहादत नहीं पढ़ता, मैं माजर मुझे नहीं पता कि बर्दाश्त नहीं होने वाला, बस मैं आखिरी मंजिल और शबीए झूला है जनाब असगर बराबर। लुट गया हुसैन का घर, लुट गया सैयदा की कमाई। अजादाराने मोहतरम, बस आखिरी सुनिएगा, जब पहली दफा पानी मिलाना वो छोटी बच्ची वो बहन दूध दे रही, असगर पानी आ गया।

0: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
1: चलो जल्दी करो, देर हो रही है। शहर के हालात ठीक नहीं है। शहर के हालात ठीक नहीं है, हमें जल्द घर पहुंचना चाहिए।
0: حي على خير العمل حي

0: अमीर, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैं कूफे से आया हूँ, मैं एक अहम खबर देना चाहता हूँ।
1: हट जाओ आगे से, आने दो उसे, चलो आ जाओ, आगे आओ।

0: बताओ क्या बात है, कहना क्या चाहते हो? कहाँ कुफे से आ रहे हो? क्या खबर है कुफे की, बताते क्यों नहीं?
1: अभी बताता हूँ। ला हुक्मा इल्ला लिल्ला वला नाबुदु इल्ला इय्या।
0: कहना क्या चाहते हो?
1: अभी बताता हूँ लो। अमीर पर हमला हो गया है।
2: रूमी तबीब कहाँ है? जाओ उसे जल्दी ले आओ। बंदर कैसे आ गया? निगेवान कहाँ है? यहाँ के निगेवान कहाँ चले गए? आओ तुम सब मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। अमीर आप लेट जाइए, आग लाओ आग।
0: क्या जख्म ज्यादा गहरा है?
3: मामूली सी खराश है।
0: फिर आतश किस लिए?
3: एहतियात के तौर पर।
0: मेरा बदन दागदार नहीं होना चाहिए।
3: नहीं नहीं होगा।
0: चलो शुक्र है, वरना हर दाग की जगह तुम्हारे जिस्म पर जख्म लगाऊंगा।
4: वाह!
0: तुम्हें किसने खबर दे दी? घबराओ नहीं, मैं भी जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। तबीब का कहना है कि जख्म गहरा नहीं है। क्यों?
3: जी हाँ ऐसी है।
0: बेटा यजीद भी नींद से उठ के आ गया देखने के लिए कि क्या हो गया है।
1: क्या हो गया है?
0: कोई खास बात नहीं, तुम खुश रहो। क्या किया उसके साथ?
5: वो जिंदान में है, उसकी खातिर की जा रही है।

0: क्या कहा उसकी खातिर करोगे? वाह रे मेरे चचा साथ, मेरे कातिल की खातिरदारी करने का हुक्म दिया है, अब उसे इनाम देना ना भूलना मेरे चचा साथ। जरूर खवारिज से होगा, उसे किसने भेजा होगा?
1: अभी नहीं पूछा।
0: किस चीज का इंतजार है? मेरी मौत का?
2: अमीर की सलामती।
0: मेरी सलामती तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती है? मेरी जान लेने की साजिश हुई है और जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम लोगों के कान में तेल डाले हुए मेरे आगे पीछे तवाफ करते फिर रहे हो। ले आओ उसे यहाँ।
3: ख्याल रखिएगा अमीर।
0: तुमने तो कहा खराश है, उठा लो मेरे सर से अपना हाथ।
3: अमीर मैं खूनरेजी को रोकना चाहता हूँ,

0: Sergio. नहीं ठहर जाओ, रुक जाओ, वापस हो जाओ। बाहर, सब बाहर, जाओ बाहर।
1: हम आपके लिए परेशान हैं अमीर।
0: तुम भी जाओ, अपने प्यारे बेटे का हाथ पकड़ो और चली जाओ। जाओ और तमाम महल वालों को बता दो कि मुआविया इब्न अबी सुफयान जिंदा सही और सालिम है। और जब तक तुम सब लोगों को सिपुर्दे खाक न कर दे, किसी के लिए जगह छोड़ने वाला नहीं। जाओ। बस बहुत हुआ, सब बाहर, चलो बाहर जाओ। बोस जाओ, तुम भी जाओ, हालात पर कड़ी नजर रखो, सड़कों पर सिपाहियों की और महल के मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो।
2: जैसे अमीर का हुक्म।
0: ए, तुम कहाँ? तुम्हें नहीं कहा था मेरे चचा साद, तुम मेरे सरदार हो ना, मुझे तो तुम ही पर भरोसा है। तुम जहाक और मुगैरा मेरे वफादार साथी और मेरी जान के मुहाफिज, तुम्हारे बगैर न मैं अमीर, न हाकिम शाम और न अरबों का खलीफा। निकल जाओ तुम लोग, निगहबानों की क्या जरूरत जब तुम जैसे मेरी जान और माल और हुकूमत के मुहाफिज हो। अगर आज तुम लोग नहीं होते तो नामुराद अपने आप को मुझ तक पहुंचा देता है और मुझ पर काली जर्ब भी लगा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम लोग जैसे लायक और वफादार साथी जो मेरे हमराह थे, मेरी जान के मुहाफिज।
3: जख्म जबान न लगाएं अमीर, आपने खुद कहा था।
0: क्या कहा था?
3: यही कि उसको आगे आने दिया जाए।
4: हमने तो उसे रोक दिया था।
0: उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की, तलाशी क्यों नहीं ली? उसके इरादे से बाखबर होने के बाद खड़े होकर तमाशा देख रहे थे।
5: क्या आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं?
0: और क्या, तुम तीनों पर। तुम पर नालायकी का इल्जाम इसलिए कि तुम शहर में ऐसे खतरनाक आदमी के वजूद से बेखबर थे। तुम पर बेवकूफी का इसलिए कि जिस तरह होना चाहिए था मेरी जान की हिफाजत न कर सके। और तुम मेरे चचाजाद, अब तक दो खुलफाओं पर जानी हमले हो गए और उन दोनों हमलों में तुम मौजूद थे। पहली बार जब उस्मान का कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा आज जब खुद मुझ पर हमला हुआ। खबरदार करता हूं मैं तुम्हें, अगर फिर कभी जहां कहीं भी किसी खलीफा, अमीर और बादशाह पर हमला हुआ और तुम वहां मौजूद रहे तो समझ लो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अपने अजदाद की तरह एक खुराफाती शक्ल में जिंदा बचा हूं। मैंने अपनी बात अच्छी तरह कह दिया और वाजे कर दूं?
3: नहीं, वाजे है अमीर। जैसे भी हो मैं उस शख्स को जबान खोलने पर मजबूर करूंगा।

0: ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं।
1: रहने दो, खताकार अच्छी तरह वाजे है। मैं जानता हूं कि किसने उसे मेरे कत्ल के लिए मामूर किया है।
2: मालूम है?
1: अच्छी तरह।
2: कौन है वो?
1: वही जिसने उस्मान को कत्ल किया।
0: लेकिन यह भी मालूम कहां?
1: बकवास करते हो, सबको मालूम है कि उस्मान को अली ने कत्ल किया। क्या हम लोगों ने उस्मान के लिबास को नोक नेजे पर बुलंद नहीं किया? क्या उम्मुल मोमिनीन ने उसके खूनखाही के लिए खुरूज नहीं किया? वह मोहम्मदा की फरियाद क्या आसमान तक बुलंद नहीं हुई? क्या ये सब झूठ था? हम झूठ कह रहे थे? अब जाओ, तमाम बुजुर्गान कौम को, सरदारों को और शुरफा को दरबार आम में इकट्ठा करो। कहो माविया मजरूह और जख्मी हालत में उनसे कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि खंजर जहर आलूद रहा हो, और मुमकिन है कि माविया हालत इंतजार में हो।

नहीं जानते हो? क्या नहीं जानते? आंखों तुम्हारे सरों पर, क्या जानना चाहते हो? ये जानना चाहते हो कि वो कौन है जो हम सबका दुश्मन है? जानना चाहते हो वो कौन है जो दुश्मनों को इस बात पर मामूर करता है कि हम सबको खाने खुदा में हलाक करे? चाहते हो कि मैं तुम्हें उसका नाम बताऊं? सुनोगे तुम लोग कि कातिल ने किस चीज का एतराफ किया है? क्या तुम लोग सचमुच नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते? तुम लोग अनजान बन रहे हो या नादानी का इजहार कर रहे हो? शायद हिम्मत नहीं रखते। हो सकता है कि खौफ जदा हो कि अगर उसका नाम जबान पर लाओ तो वही आफत तुम पर भी आ जाएगी जो मुझ पर और उस्मान इब्ने अफान पर आ पड़ी। क्यों, ऐसा नहीं है क्या? हकीकत में मेरी

हुकूमत के सरदार और शराफा बुजदिल और डरपूक लोग हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ उस्मान की मौत से किस शख्स ने फायदा उठाया? मुझे जवाब दो। और वो कौन है जो मेरी मौत से नफा उठाना चाह रहा है? खामोश क्यों हो गए? नहीं जानते? बुजुर्गो, सर्वतमंद, दमिश्क शाम के शरीफ साधो, ये जान लो कि मैं तुम्हारी बलाओं की ढाल हूं, और मुझे जख्मी करने का मतलब तुम्हें आसानी से तबाह करना है। और ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे दरमियान अगर न रह जाऊं तो अली एक एक करके तुम्हें चुन डालेंगे। तुमसे ये मेरी आखिरी वसीयत है और तुम्हारी बका के लिए वाहिद शर्त है, अली से होशियार रहो और अपने ताल्लुकात को मुझसे मजबूत कर लो। जाओ, इस गुफ्तगू का किसी से तस्करा न करना। अगर कोई पूछे कि माविया जिंदा है तो जवाब न देना, और अगर सवाल करे कि मर गया तो सुकूत इख्तियार कर लेना। बस सिर्फ अली का नाम लो और उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना। बस अब जाओ और अपने सारे उमूर की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। जाओ।

0: Zindabad.
1: आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब, दरवाजा खोलो।
2: इताअत।
1: तशरीफ लाओ।
2: तुम भी आओ।
1: सीढ़ी नीचे करो।

0: हमें पहचानते हो?
1: हाँ, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ। बल्कि जिसने भी जंगे सिफीन में शिरकत की है, वो मरवान और जहाक जैसे शैतानों को कैसे नहीं पहचानेंगे।
0: तुम शहर में कब दाखिल हुए?
1: कल सुबह।
0: और कौन था तुम्हारे साथ?
1: मैं अकेला हूँ।
0: किसकी तरफ से मामूर किए गए हो? अली?
1: अली? नहरवान में हमारे भाइयों को अली ने मारा है।
2: तो खवारिज से हो तुम, तो अली के दुश्मन हो, फिर कैसे?

0: से अमीरुल मोमिनीन की जान के दुश्मन हो गए।
1: अमीरुल मोमिनीन, किसने उसे हमारा अमीर बनाया है?
2: हकमैन ने
1: सिर्फ खुदा का हुक्म काबिल कबूल है, हाकिम सिर्फ खुदा है। जिसने हकमियत को कबूल किया वह सजाए मौत का हकदार है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, वरना मैं इस जैसे काफिर को मारने के लिए कभी नहीं आता।
2: तुम अमीर के कुफर के बारे में मुतमईन हो?
1: हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ।
2: और अली के बारे में?
1: अली भी मौत के मुस्तहक हैं।
2: तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे छुपाना चाहते हो?
0: सुना नहीं, सरदार ने तुमसे क्या पूछा है उसका जवाब दो।
1: मेरे पास कहने को कुछ नहीं है।
2: क्यों नहीं, बात तो जरूर है, जल्दी ही तुम्हारी जबान खुल जाएगी।
1: बिला वजह की जहमत ना करो, मेरी मौत का हुक्म सादिर करो। तुम्हारे ये कोड़े और गुर्ज और ये मारपीट मेरी जबान नहीं खुलवा सकते।
2: किसने कोड़े और गुर्ज की बात की? मैंने?
0: तुम आखिरत पर एतकाद रखते हो?
1: इतना कि जितना तुम नहीं रखते।
2: जन्नत और जहन्नम कुछ समझ में आता है?
1: इन चीजों पे हमें तुमसे ज्यादा यकीन है।
2: तुम सही कहते हो, लेकिन हम यकीन नहीं रखते, और चूंकि हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि हम इसी दुनिया में अपनी जन्नत बना लें। उसको निकाल लो।
0: ए, तुम और तुम आओ मेरे साथ।
2: इसको जरा हमारी जन्नत दिखा दो।

तुम्हारा कहना था कि हमारे कोड़े और गुर्ज तुम्हारी जबान नहीं खुलवा सकते, अब क्या कहते हो?

0: क्या ख्याल है, हमारी जन्नत में कुछ दिन मेहमान रहना चाहोगे?
1: मैं सब बता दूंगा। हाँ मैं सब बता दूंगा।
2: तुम यकीन करते हो?
0: उसका कहना है कि उसके पास एक खास खबर है जो सिर्फ वो अमीर को बताना चाहता है।
2: झूठ बोलता है। मैं इस बात से मुतमइन हूं कि कोई अहम खबर नहीं रखता। वो सिर्फ वक्त बर्बाद करना चाहता है।
3: वो ऐसा डरा हुआ था कि उसका सारा जिस्म लरज रहा था।
0: उसको अच्छी तरह मालूम है कि अगर नहीं बताएगा तो उसका क्या अंजाम होगा।
2: ज्यादा मुतमइन ना हो जाओ। खवारिज अपने धोखेबाजियों से जिंदा है। हर आन अपना चेहरा बदलते रहते हैं। न उनके कौल का भरोसा है, न उनके डर और खौफ का एतमाद, और ना ही उनके ईमान का कोई एतबार। यहां तक कि उनकी बेवफाई पर भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता।

0: अब सिर्फ आप ही अमीर अल मोमिनीन है, अमीर अल मोमिनीन। अमीर मुझे भूलिएगा नहीं, ये अहम खबर मैंने आप तक पहुंचाई है।
1: क्या कहा अली?
0: अली और अमरे आस
1: झूठ बोलता है।
0: अमीर अपना कासिद भेज के देखिए, जल्दी ही आपको

0: सारी खबर मालूम हो जाएगी।
1: अगर अली का कत्ल हो गया है तो
0: तुम अमीर अल मोमिनीन हो।
1: मैं अमीर अल मोमिनीन।
0: अमीर, मुझे भूलिएगा नहीं।
1: मैं तुझे नहीं भूलूंगा, उसकी खातिर तवाजो करो और जो कुछ चाहता है उसके हवाले करो। अगर झूठ हो तो तेरी खैर नहीं। आओ मेरे साथ, मरवान, जहाक, वगैरह।

0: ए मलून, अमीर के कान में क्या पढ़ के फूंक दिया है तूने?
1: मैंने अमीर से कहा कि अगर तुम्हारा मकाम मुझे दे दे तो मैं उनके लिए जन्नत और जहन्नम को एक कर दूंगा।
0: तू ख्वाब में भी नहीं देखेगा।
2: मिस्र और कूफे को खास से रवाना करो।
3: किन के लिए अमीर?
2: किसी के लिए भी नहीं।
4: पैगाम क्या होगा?
2: बगैर पैगाम के।
3: काहे के लिए?
2: कुछ नहीं, बस जानना चाहता हूं कि मिस्र और कूफे में क्या हो रहा है, बस। सुनो, मिस लाजिम नहीं है, सिर्फ कूफा, सिर्फ कूफा।

0: जाओ, अपना ख्याल रखो, शहर की हालत ठीक नहीं है, जल्दी वापस आ जाना।
1: इसे लो और मुआविया तक पहुंचा दो, और कूफे के हालात बता दो, और कहना कि एक इशारे के मुंतजर है।

0: हैरो, अमीर किसी से नहीं मिलेंगे।
1: हमें भी नहीं?
0: हाँ, अमीर ने हुक्म दिया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए।
1: ठीक है।

0: ना जाने उस मलून ने अमीर के कान में क्या पढ़कर फूंक दिया, उस वक्त से अमीर की यह हालत हो गई है।
1: सुना है कूफे की तरफ कासिद भेजा है।
0: भेजा तो है लेकिन बगैर किसी पैगाम के, उसको सिर्फ कूफे जाने के लिए कहा।
1: चलो उसके पास चलते हैं, वो जानता है, उसकी जबान से उगलवाना चाहिए।
0: हमको ऐसा इख्तियार नहीं है बानो।
1: मैं जिम्मेदारी लेती हूँ।
2: इधर आओ नीचे।

0: तुम क्यों मेरी ताकत में पड़ी हो? मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब भी नजर उठाता हूँ तो तुम्हें किसी न किसी सुतून के आड़ में देखता हूँ। बताओ क्यों इतनी परेशान हो?
1: मेरी परेशानी तो सिर्फ अमीर की सलामती के लिए। अमीर जख्मी है, उसे आराम की जरूरत है। खाना पीना सब छोड़ रखा है और फकत टहलते रहते हैं और परेशान हैं। किस चीज के मुंतजिर हो?
0: तुम किस चीज की मुंतजिर हो?
1: मुंतजिर हूँ कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो और अमीर को सुकून मिले।
0: मुतमईन हो?
1: जी अमीर।
0: शायद तुम मुंतजिर हो कि मैं बेजान हो जाऊं और मेरी सांस की रफ्तो आमद बंद हो जाए और खंजर जहर आलूद रहा हो। जहर किसी वक्त भी अपना काम तमाम कर सकता है और तुम यजीद के बहाने हुकूमत को खुद उचक लेना चाहती हो।
1: अमीर,
0: मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैंने भी तुम पर कड़ी नजर रखी है और जानता हूं कि तुमने यजीद को किस तरह काबू में कर रखा है। जिस तरह मुद्दतों से मुझ पर कब्जा कर रखा है और तुम्हारे दिमाग में क्या चीज जन्म ले रही है।
1: मुझे यजीद से मोहब्बत है। मैं उसकी दाया हूँ। अपनी आगोश में उसे परवान चढ़ाया है। वो मुझसे माँ की तरह मोहब्बत करता है। क्या मेरी मोहब्बत ने अमीर को परेशान कर रखा है?
0: नहीं, तुम इसी मोहब्बत के सहारे मेरे महल पर मुसल्लत हो गई और अब मेरी हुकूमत की लालच में पड़ी हो।
1: बेइंसाफी कर रहे हो अमीर।
0: सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी जाह-तलबी को मैं अच्छी तरह समझता हूं। बेहतर है कि समझ लो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान इतना सादा लो नहीं है जो हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथों में दे दे। बहुत जल्द ऐसा काम करूंगा कि यजीद मेरे अलावा किसी को अहमियत न देगा, यहां तक कि तुम्हें भी। अब यजीद को अपने हाल पर रहने दो और मेरी हुकूमत की लालच छोड़ दो। मुझे धोखा देने की कोशिश न करो।
2: अम्र इब्ने हुरैस की जानिब से एक कासिद कूफा से आया है।
0: मुझे और मेरी बादशाही को अपने हाल पे छोड़ दो।
3: अमीर, कूफे से कासिद आया है। अम्र इब्ने हुरैस की जानिब से पैगाम लेकर आया है।

जानना चाहते थे ना मैं किस चीज का मुंतजिर था। आओ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आओ,

0: The hellhound.
1: Ron, the dog.
2: Angels.
0: सच कहा तूने, बिल्कुल सच। अली ने जरबत खाई है और अब बिस्तरे मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्ने हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके के आफ्ताब निकले अमीर अल मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल मोमिनीन।
3: हे अमीर अल मोमिनीन, मुझे यहां ना छोड़िए।
0: मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है लेकिन तमाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी।